एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 21 जुलाई वर्ष 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यही प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यही प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन।

0: प्रातः के 6 बजे हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इनमें प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो।

0: और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ दूरदर्शन के DTH चैनल पर। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

जब से ये धरती है तब से ही फूल इस धरा को महका रहे हैं। मनुष्य के अस्तित्व से भी पहले इस धरती पर पानी और वनस्पति ने ही अपने सौंदर्य को बिखेरा होगा। दूर दूर तक फैली हुई घाटियां हरियाली की चादर ओढ़े अपने सतरंगी रूप में जब हमारे सामने होती है तब हमें यकीन ही नहीं होता कि ईश्वर कितना मेहरबान है। और प्रकृति की इस छटा में चार चांद लगाते हैं वो पुष्प जो अपनी रंगीनियत से धरती की हरियाली को श्रृंगारित करते हैं। फूल और उनके पराग, उनका रस तितलियों और भंवरों के लिए ही होता है। कितने ही कीट पतंगों का जीवन फूलों पर निर्भर है, एक फूल पर तितली का मंडराना हमें एक अलग ही आनंद देता है। एक फूल का अपने पेड़ पर खिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी माँ की गोद में उसका शिशु खिलखिला रहा हो। एक फूल का खिलना हमें उम्मीद से भर देता है। जब फूल खिलखिलाते हैं तब जीवन के सभी दुख हम भूल जाते हैं। फूलों का खिलना हमें सकारात्मकता से भर देता है और फिर ऊस की बूंदों को अपने आप में समेटे जब गुलाब अपनी पूरी रंगीनियत के साथ मुस्कुराता है तब हमें उसकी तपस्या को भी समझना चाहिए। फूल अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, अपनी खूबसूरती और सुगंध वो हमेशा दूसरों पर न्यौछावर करता है। इसमें एक बड़ा संदेश हम सबके लिए भी है कि हमारी अच्छाइयां मनुष्यता के लिए हों। हमारे आंगन के बगीचे और गमलों में मुस्कुराते फूलों को देखिए, वो हमसे यही कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराइए। आपकी मुस्कुराहट किसी के लिए औषधि का काम करती है। निस्वार्थ रहिए और अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाते रहिए एक फूल की तरह।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समूह स्वर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित पर आधारित श्री रामचरित मानस गान, कड़ी संख्या 126। संगीतकार है सतीश भाटिया।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

अयोध्यापुरी में श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावी बजने लगी। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग भड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के जो अपने ननिहाल गए हुए थे अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं।

रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतरपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पर आए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी, ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

श्री रामचरित मानस गान का ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती में बात। 6:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वातायन।

प्रातः 7:30 पर, प्रातः 10 बजे और पुनः 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे। 8:15 पर प्रस्तुत होगा दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे प्रातः 8:45 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे, वहीं 9:10 पर और पुनः 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा प्रातः 9:30। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी लोक। विविध भारती के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर और रात्रि 9:00।

प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे शाम 6:15 पर। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी को आप सुनेंगे शाम 7 बजे। 7:30 पर प्रस्तुत होगा जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे समाचार संध्या।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई के संपादित अंश और कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: आप सुन रहे थे दिनभर के कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम खेती नी बात का।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हमारे द्वारा सात भाइयों ने सोला दियो। वालजी भाइयों राम राम। किसान भाइयों देखो हवर हवर ना समय में अपने सब भाई क्षेत्र आदि रह जा सका। किसान भाइयों सोरा ऊपर आते आपने बात करी रहा कि खेती में अपने जे बुआई करी है, जे अनाज ने बुआई करी है, इन्हें हाथे हाथे अपने किसान भाई ने थाउज हुए कि खेती ने हाथे हाथे सब्जी ने भी अपने संरक्षित खेती करी सका। क्योंकि किसान भाइयों कृषि ना दे विशेषज्ञों मानवो है कि जुलाई में जे अपने आना महीना में लगाड़ी कुछ सब्जी तेजी से की बढ़े हैं ने बाजार में तो 12 महीना मांग अस रहे है। एवा में किसान भाई भी खेती ने हाथे सब्जी ने खेती ऊपर भी ध्यान आली ने अपनी आमदनी दे है ये बदारी शके। किसान भाइयों आना में कुछ सब्जी में आपने बता दी रहूं आज थोड़ा ऊपर चर्चा करी रहा हूं अपने के एक तो फूल गोभी है जे अपने जुलाई ना महीना में फूल गोभी ने नर्सरी तैयार करी ने खेतर में रोपाई करी शका। अनुकूलन मौसम

0: मलवा ऊपर आनी फसल ने अच्छी पैदावार थाय है। अगर पौधों ने सही समय ऊपर देखभाल थी जा तो बेहतर उत्पादन लई शक, जल्दी तैयार ने अच्छो मुनाफो भी आ फसल आले है। आमनी आम एक बंद गोभी आनी भी बाजार में मांग बनी थकी रहे। बंद गोभी एवी सब्जी जे साल भर साले है। आड़ा महीना में खेती करी पौधों ने पर्याप्त नमी मिले है, जेने से की अच्छी पड़वार भी थाए है। एक किसान भाईओ भिंडी नी सब्जी है, जे सब्जी लगातार तुड़ाई ने लगातार कमाई वारी है। अगर आप बार बार आमदनी चाहिए हो तो भिंडी नी सब्जी आनो सही विकल्प है, क्योंकि आनी तुड़ाई कई बार थाए है, जेने से की किसान भाई बार बार आने बाजार में बिक्री करी सके। टमाटर की खेती भी किसान भाई करी ने अच्छो उत्पादन ले सके, क्योंकि अच्छी देखभाल थकी बढ़िया उत्पादन मिली सके। बिल्कुल किसान भाई, वो टमाटर की खेती में थोड़ी अधिक देखभाल की जरूरत तो पड़े है, पर सही प्रबंधन अपनावा थकी आ फसल भी अच्छो मुनाफो आली सके। बारिश ना मौसम में पौधा ने फफूंद ने कीट थकी बचाव आवश्यक है। किसान भाइयों, संतुलित खाद ने उर्वरक ने उचित दूरी ऊपर पौधा लगाड़वा थकी उपज ने अधिक आपड़े पकावी शकाना। एक बैंगन की खेती भी किसान भाई करवू चाहे तो करी सके। किसान भाइयों, बैंगन भी लंबा समय तक उत्पादन आलवा वाली सब्जी है, क्योंकि बैंगन की फसल में सप्त की बड़ी खासियत ई है कि एक बार तैयार थवा बाद लंबा समय तक आ फल आले है। आना बल्ले किसान ने सलाह ना रूप में देखो तो प्रमाणित बीजों चयन करवो पड़ेगा, खेतर थकी पानी की निकासी करनी पड़ेगा, समय ऊपर कीट ने रोगों थकी बचावू पड़ेगा, ने एक है कि संतुलित मात्रा में खाद ने उर्वरक नो प्रयोग करवो पड़ेगा। किसान भाइयों, देखो आपे सब्जी की बात करी है आपने, अवे आ कार्यक्रम खेती की बात नो समय पूरो थी गयो है, तो आज तो वालजी भाई ने आज्ञा आलो काले सोरा ऊपर फिर नवी जानकारी ने हाथे आपणे मलंगा। ए आवजु, राम राम, राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती में बात। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नाथू भगत व साथियों द्वारा गाए कुछ लोक भजन।
2: सुरा

अगम भम में वसे राम भक्ति, अगम भम में वसे राम भक्ति। कोई सुरा नर नो काम।

0: आप सुन रहे थे नाथू भगत और साथियों द्वारा गाए कुछ लोक भजन कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आपको सुनवा रहे हैं कपिल गुर्जर से काव्य पाठ। शीर्षक है पूरी रोटी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गुर्जर आपके सामने एक साहित्यिक रचना साथ में जो आज के परिप्रेक्ष्य में मार्मिक है उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इस रचना का शीर्षक है पूरी रोटी। बड़े दिनों बाद आज हाथ में पूरी रोटी देखकर तसल्ली मिली। बड़े दिनों बाद आज हाथ में पूरी रोटी देखकर तसल्ली मिली। जैसे किसी अनाथ को माँ बाप मिले हो ना, वैसी ही खुशी मिली। बड़े दिनों बाद आज हाथ में पूरी रोटी देखकर तसल्ली मिली। मेरे एक दिल ने कहा कि इस रोटी को जल्दी खा ले। कोई देख ले इसके पहले ही इसे चबा ले। तो दूसरे ने कहा अरे रुक इसे संभाल के रख। कोई देख ना ले इसलिए कपड़े फिर थैले और फिर घास फूस से ढक। न जाने फिर कभी ये देखने को मिले, न जाने फिर कभी इसे हाथ लगा पाए। इसे तो तू किसी ऐसी जगह छिपा के रख दे कि ये फिर किसी को भी नजर ना आए। बड़े दिनों बाद आज हाथ में पूरी रोटी देखकर तसल्ली मिली। जैसे किसी अनाथ को माँ बाप मिले हो ना, वैसी ही खुशी मिली। याद नहीं कि कब इसे पहले देखा था। देखा भी था या सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था। कुछ दिनों कुछ महीनों या कुछ सालों पहले भी देखा होगा। अब तो मेरी याददाश्त भी धुंधला गई है, शायद इस पर वक्त की धूल छा गई है। पर इतना जरूर याद है कि वो रात दिवाली की थी। जिस दिन मैंने इसे देखा था

बस देखा ही तो था, छुए तो मुझे बरसों हो गए। हाँ बस देखा ही तो था, छुए तो मुझे बरसों हो गए हैं। बड़े दिनों के बाद आज हाथ में पूरी रोटी देखकर तसल्ली मिली, जैसे किसी अनाथ को माँ बाप मिले हो ना, वैसी ही खुशी मिली। शायद वो जमाना मेरी जवानी का रहा होगा, शायद वो जमाना मेरी जवानी का रहा होगा जब मैंने इसे इसके पूरे रूप में देखा होगा। शायद वो जमाना मेरी जवानी का रहा होगा जब मैंने इसे इसके पूरे रूप में देखा होगा। याद आया जब हम बेटे को रोटी खिलाते थे, याद आया जब हम बेटे को रोटी खिलाते थे, उसे अपने सीने से लगाते थे, तब हम भी पेट भरकर पूरी रोटी खाते थे और साथ में कुछ मीठा भी मंगवाते थे। याद आया जब हम बेटे को रोटी खिलाते थे, उसे अपने सीने से लगाते थे, तब हम भी पेट भरकर पूरी रोटी खाते थे और साथ में कुछ मीठा भी मंगवाते थे। कभी कभी घर में आटा कम पड़ जाता था, कभी कभी घर में आटा कम पड़ जाता था, शायद दो या तीन रोटी का ही बच पाता था, तो भी हमने गम नहीं किया। बेटा है इसलिए दिल पर जख्म नहीं लिया। उसकी माँ बड़े प्यार से रोटी बनाती थी, बेटे को गोद में बिठाकर खिलाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी और फिर उसी गोद में उसे सुलाती थी। उसकी माँ बड़े प्यार से रोटी बनाती थी, बेटे को गोद में बिठाकर खिलाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी और फिर उसी गोद में उसे सुलाती थी जब मैं आता था थक हार के काम से, रहता था चूर दिन भर की थकान से, तो वो मेरे पास आती और कहती, सुनो जी एक गुजारिश करूं, आज आटा खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा था, उसकी रोटी मुन्ने को खिला दी, यही मुझे जचा था। क्या आप पानी पीकर काम चला लेंगे, इस कपड़े को पेट पर बांध कर रात बिता लेंगे, तो मैं कहता था, अरे भगवान मुझे कोई गिला नहीं, रात को भूखे सोने का भी शिकवा नहीं, एक दिन भूखे सोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज व्रत उपवास करेंगे, यही है सरल रास्ता। पर बेटे को भूखा रखकर भी हम कैसे सो जाते, उसके भूखा रहने पर क्या माफ भी खुद को कर पाते, अरे उसके लिए ही तो मैं दिन रात मजूरी करता हूँ, पढ़ लिख के काबिल हो जाए यही दुआएं करता हूँ। चल अब सो जा बांध के कपड़ा, और जरा तू देख घड़ी, वरना तुझको लगने लगेगी ये छोटी सी रात बड़ी। बड़े दिनों बाद आज हाथ में पूरी रोटी देखकर तसल्ली मिली। पर अब वो दिन कहाँ, अब वो रात कहाँ, अब वो भावना, वो बात और वो जज्बात कहाँ। लोग कहते हैं कि अब महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए शायद मेरी रोटी भी बढ़ गई है। मैंने सोचा मेरी रोटी किसके हिस्से में जाती है, ऐसा तो नहीं कि महंगाई इसे खाती है, जानने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर गया, इधर उधर देखा और सभी चीजों पर गौर किया, तो मैंने देखा कि मेरा हिस्सा बेकार नहीं जा रहा, अरे इसे और कोई नहीं, मेरे बेटे का कुत्ता है खा रहा। पास में उसके मुझे कटोरा भी दिखा, कटोरे में झांकने पर उसमें दूध मिला। जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो वो गुर्राया, थोड़ा सकुचाया और फिर मुझे देखकर इतराया। मानो कह रहा हो कि तेरे हिस्से की रोटी अब मैं खा रहा हूँ और जो दूध तुमने उसे पिलाया उसका हिसाब चुका रहा हो। मानो कह रहा हो कि तेरे हिस्से की रोटी अब मैं खा रहा हूँ

0: और जो दूध तुमने उसे पिलाया उसका हिसाब चुका रहा हूं। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हुआ, थोड़ा सा दुखी, थोड़ा परेशान हुआ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हुआ, थोड़ा सा दुखी, थोड़ा परेशान हुआ। पर फिर मैंने मन को अपने बहलाया, छोटी सी है बात ये दिल को समझाया कि आजकल का जमाना खराब आ गया है, चोर उचक्कों का ही राज आ गया है। ऐसे में घर की परिवार की रक्षा कौन करे, बीवी बच्चों की सुरक्षा कौन करे? ऐसे में घर की परिवार की रक्षा कौन करे, बीवी बच्चों की सुरक्षा कौन करे? मैं बाप और ये कुत्ता, हम दोनों ही प्रहरी हैं। शायद आजकल जमाने की बातें यही आ ठहरी है कि मैं बाप और ये कुत्ता, हम दोनों ही प्रहरी हैं। शायद आजकल जमाने की बात यही आ ठहरी है। ये पूरे घर की रक्षा करता है इसलिए पूरी रोटी खाता है, पर मैं बेचारा तो चल भी नहीं पाता, फिर भी बेटे की दया से आधी रोटी पाता हूँ। ये पूरे घर की रक्षा करता है इसलिए पूरी रोटी खाता है, पर मैं बेचारा तो चल भी नहीं पाता हूँ, फिर भी बेटे की दया से आधी रोटी खाता हूँ। धन्यवाद। अंत में, कि जिस पर हमने अपना पूरा जीवन न्योछार किया, जिस पर हमने अपना पूरा जीवन न्योछार किया, आज उसी ने हमको अपने घर से दिल से बाहर किया। जिस पर हमने अपना पूरा जीवन न्योछार किया, आज उसी ने हमको अपने घर से दिल से बाहर किया। और एक मिसा कि जिसके जिस्म में कतरा मेरे खून का है दौड़ रहा, आज वही बेटा जीवन की मझधार में क्यों छोड़ रहा, आज वही बेटा जीवन की मझधार में क्यों छोड़ रहा। धन्यवाद।
1: कपिल गुर्जर से आप सुन रहे थे काव्य पाठ पूरी रोटी। इसी के साथ कार्यक्रम वातायन यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। साथियों, हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में शुमार आनंद बख्शी ने अपने सहज और दिल को छू लेने वाले शब्दों से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। आज आइए सुनते हैं उनके लिखे कुछ सदाबहार और यादगार गीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मस्ताना फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।
1: जब हम तुमको देखे हैं रिठेला, जब जब हम तुमको देखे हैं रिठेला, मन

0: हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। जब भी दिल की भावनाओं को आसान शब्दों में बयां करने की बात होती है तो आनंद बख्शी का नाम सबसे पहले याद आता है। उनके गीत हर दौर में गुनगुनाए गए हैं। आज ऐसे ही कुछ खूबसूरत नगमे हम सुन रहे हैं। अगला गीत आपको सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: होठ

0: बहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कहानी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत के शब्दकार हैं आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।
1: कहां आपका ये बजा ही सही कि हम बेकदर बेवफा ही सही। बड़े शौक से जाइए छोड़ कर मगर सहने गुलशन से।

कर्म फिल्म का गीत अब सुनी आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छाप।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को

0: और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा सर्व्स एज अ नेचुरल ब्रिज फॉर अस।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मॉनसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने

0: स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरूआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में एफआईएच यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार

0: देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ दिल से को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, शब्द जहां खत्म होते हैं संगीत वहां से शुरू होता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम पर चर्चा का विषय है संगीत, वो संगीत जो हमारे रूह को छू लेता है। संगीत सिर्फ सात सुरों का मेल नहीं, बल्कि ये हमारे जज्बातों की जबान है। जब हम खुश होते हैं तो पैरों को थिरका देने वाली धुन पसंद आती है, और जब दिल थोड़ा उदास होता है तो गजल या कोई धीमा राग मरहम बन जाता है। और भारत तो वैसे भी सुरों की भूमि है। हमारे यहां जहां एक तरफ शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा है, जिसमें रागों के जरिए मौसम तक बदल जाने की ताकत हुआ करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ आज का मॉडर्न फ्यूजन संगीत है, जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है। संगीत पर बातें तो होती रहेंगी, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कभी सोचा है कि संगीत हमारे इतने करीब क्यों है? मां की लोरी से शुरू हुआ सफर जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक साथ निभाता है। जब कोई हमदर्द नहीं होता, तब हेडफोन में बजता एक गीत हमारा सबसे बड़ा हमराज बन जाता है। कहते हैं कि शब्द दिमाग से बात करते हैं, लेकिन संगीत सीधा दिल से बातें करता है। इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती। तभी तो स्पेनिश गाना डेस्पासितो हो या कोरियन बीटीएस के गाने या फिर हमारे देश के सूफी कलाम, हम बस उसकी धुन में बह जाते हैं।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार
2: श्रोताओं, जब हम संगीत की बात करते हैं तो हम बड़े बड़े कॉन्सर्ट या बॉलीवुड गानों में खो जाते हैं, लेकिन संगीत की असली जड़ें, उसकी असली आत्मा तो हमारी मिट्टी में बसी है, जिसे हम लोक संगीत कहते हैं। ये वो संगीत है जिसे सीखने के लिए किसी बड़े उस्ताद या एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ती। यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी, दिलों से दिलों तक ट्रांसफर होता है। राजस्थान के रेतीले धोरों से गूंजती लंगा मांगणियार की सुरीली तान हो, पंजाब का जोश से भरा भांगड़ा, उत्तर प्रदेश के आंगन में गाए जाने वाले सोहर और कजरी हो, या फिर बंगाल का सूफियाना संगीत, इन सब में हमारी संस्कृति की महक है। लोक संगीत हमें याद दिलाता है कि हम चाहे जितने आधुनिक हो जाएं, हमारी जड़ें आज भी इसी माटी के सुरों से जुड़ी हुई हैं।

सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? इसकी अपनी एक टाइम मशीन होती है। स्कूलों के दिनों का वो कोई खास गाना जब आज अचानक रेडियो पर बजता है तो दिल सीधे पुराने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। किसी की पहले प्रेम की यादें किसी खास धुन से जुड़ी होती हैं, तो किसी की बारिश की पहली बूंदे किसी खास राग मल्हार से। संगीत की सबसे बड़ी ताकत तो जानते हैं क्या है? यह दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जिसके लिए किसी डिक्शनरी या अनुवादक की जरूरत नहीं होती। नफरत की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों न हों, संगीत के सुर उनके आर पार निकल ही जाते हैं।

अंत में दोस्तों, हमारी यह जिंदगी तो एक संगीत ही है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी जिंदगी में खुशी की धुन होती है तो कभी गम का धीमा आलाप। लेकिन जैसे एक अच्छा संगीतकार हर सुर का सम्मान करता है, वैसे ही हमें भी जिंदगी के हर मोड़ का स्वागत करना चाहिए। अगर उदासी का सुर न हो तो खुशी के सुर की कीमत हमें कैसे पता चलेगी? तो बस अपनी जिंदगी की इस धुन को खूबसूरती से बजने दीजिए। बेसुरा होना ठीक है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। गुनगुनाते रहिए और जिंदगी को एक खूबसूरत गीत बनाते रहिए।

सुरों की इस महफिल में वक्त का पता ही नहीं चला, पर घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि अब विदा लेने का वक्त हो चुका है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि दिल में नफरत रखने से अच्छा है होठों पर कोई धूल सजा ली जाए, जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत हो जाएगी। इसी के साथ ही श्रोताओं, दीजिए मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिन से। इसी नगमे के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रेखा राव द्वारा गाए कुछ राजस्थानी गीत।

0: रेखा राव की आवाज में सुन रहे थे आप ये राजस्थानी गीत राजस्थानी लोक संगीत में। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 9 बजे हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 12 जिला और बगरू विधानसभा क्षेत्र से आज मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेड़ा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जांच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं विशेषकर गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की नियमित निगरानी और समय पर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर 104 और 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और मरीज को भेजे जाने वाले अस्पताल में पहले से सूचना दी जाए ताकि उपचार में देरी ना हो। बैठक में दवाइयों, रक्त और अन्य जरूरी चिकित्सा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद निर्धारित नियमों के अनुसार करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के तहत करीब 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से सीकर, झुंझुनू और चूरू सहित आसपास के क्षेत्रों तक यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे करीब 75 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी में जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर काम कर रही है। साथ ही क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2: आपने देखा किस तरह से हमने शेखावाटी की 662 हवेलियां हमारी चिन्हित हो गई हैं, जिनको बनाने वाले, जिनको सुधारने वाले जो वहां के लोग हैं या ओनर है, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के संपर्क शेखावाटी हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है। लगातार आप देख रहे तो खाटू श्याम जी के लिए भी हमने सरकार ने कहा है कि हम उनको भी 25 रुपया करेंगे, उसका विकास करेंगे। सालासर हनुमान जी का भी विकास करेंगे। शाकंभरी माता भी है, जीण माता भी है, उसके लिए भी काम करेंगे। और इसको कैसे नेटवर्क से जोड़ना है ये भी काम करेंगे। जब हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो उसका नेटवर्क, सड़क नेटवर्क बहुत आवश्यक है।
1: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए अब एक और नई परियोजना की मंजूरी मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 110 करोड़ रुपए 51 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की है। इसका क्रियान्वयन रेलवे की गति शक्ति इकाई करेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: स्टेशन पर 2 नई रनिंग लाइन, 2 पिट लाइन, 2 नए प्लेटफॉर्म, मौजूदा फुट ओवर ब्रिज का विस्तार तथा सेकेंड एंट्री स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और परिचालन क्षमता में उल्लेख

0: में वृद्धि होगी। अतिरिक्त रनिंग लाइन और नए प्लेटफॉर्म बनने से अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। दूसरी पिट लाइन तैयार होने से ट्रेनों के रखरखाव, धुलाई और तकनीकी जांच की व्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन सीजन में यात्रियों और ट्रेनों का दबाव बढ़ने को देखते हुए यह विस्तार परियोजना स्टेशन को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट आज से जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारा जिले से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज शाम वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर बारा के जिला परिषद सभागार में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। योजना का उद्देश्य युवाओं को खेल, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और महिला सशक्तिकरण से जोड़ना है। इसके तहत विधानसभा स्तर पर केंद्रीय सुयोग युवा क्लब बनाए जाएंगे, जिन्हें पंचायत और वार्ड स्तर के क्लबों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को खेल किट और कौशल प्रशिक्षण तथा खेल और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सवाईमाधोपुर जिले के एक सरकारी विद्यालय में छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय में एक महिला शिक्षक के 1,000 रूपये खो जाने के बाद कक्षा 9 और 11 की छात्राओं की 2 शिक्षकों ने तलाशी ली और उन्हें कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किया। छात्राओं के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। घटना के विरोध में अगले दिन अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि साइबर अपराध और नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ये बात उन्होंने पाली के सदर थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक में कही। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
2: इसमें जो सिटी में जो पुलिस इनका जो है उसका जो इवनिंग जो गश्त है उसको मजबूत करके शाम के समय जो मोटरसाइकिल या अन्य तरीके से जो कोई हुड़दंग का प्रयास करते हैं उनके बारे में एक विशेष कार्रवाई करके जल्दी अभियान चला के उनका रोकथाम के प्रयास करेंगे। अभी नशे खत्म के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं और आपने बताया यहाँ पर प्रचलन भी है और मुख्य रूप से यहाँ रूट्स भी है। पहाड़ी के दूसरी तरफ से जो ओपियम ग्रोइंग इलाके हैं उधर से अभी माने का ये रास्ता भी पड़ता है, तो इसके बारे में समय समय पर हम निर्देश देते हैं, नाकाबंदी भी कराते हैं और काफी मात्रा में पकड़ी भी जा रही है। उस पे और हम अधिक प्रयास करके इनको पूरा एक तरह से खत्म करने का पूरा हमारा प्रयास है।
1: प्रदेश भर में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप शुरू हो रहे हैं। ये शिविर 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि इन शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और महिला एवं बाल विकास सहित 22 विभागों के आमजन से जुड़े लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके असर से कई स्थानों पर बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित प्रदेश के करीब 16 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। धौलपुर जिले के बसेड़ी में सबसे अधिक 65 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार मॉनसूनी परिस्थितियां अनुकूल हो गई है। इसके असर से आज और कल पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी।

4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 12 जिला और बगरू विधानसभा क्षेत्र से आज मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं गजल गायक चंदन दास द्वारा गाई कुछ गजलें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत।

सुन रहे थे चंदन दास द्वारा गाई गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
0: तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
2: जी,
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी।
0: जी पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीददारी का माध्यम क्या होता है।
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
0: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था

0: वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था।
1: जी बिल्कुल सही। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
0: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
1: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है।
0: जी
1: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
0: जी जी जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टीवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
1: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है।
0: जी
1: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
0: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: सांगकेन।
2: आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? हाँ ये जानते हैं।
3: यमन भैया कहाँ हो भैया?
4: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
3: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
4: अच्छा क्या लिखा है?
3: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ।
5: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहाँ जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
2: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।

0: भैया मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
1: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
2: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
3: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
2: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
4: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
5: नमस्ते पिता।
4: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
5: ठीक है।
4: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
5: बड़ा मजा आया।
4: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
3: चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
2: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
3: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया।
4: अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
6: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
5: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
4: बिल्कुल ठीक पहचाना।
6: आइए, स्वागत है आप सबका।
4: धन्यवाद।
6: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
4: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
0: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
6: थैंक यू।
1: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
6: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
4: जी,
6: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
4: बिल्कुल ठीक कहा।
6: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
4: अरे
6: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा शंख खेन का पर्व जो है।
4: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
0: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
4: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
6: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
1: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
6: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
4: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
0: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
6: थैंक यू।
4: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
6: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
4: अच्छा
0: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
6: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
4: जल उत्सव क्यों?
6: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
4: अच्छा।
6: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
4: हाँ।
6: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।

0: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
0: तो हम भी चले?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
0: चलो चलो चलो।
2: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
3: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: हैप्पी संकेत।
2: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
0: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
3: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
2: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
0: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
0: जी अंकल।
1: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
3: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओं, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है। क्लैप एंड स्माइल।
3: हेलो फ्रेंड्स।
4: हेलो।
3: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Buddy Langdingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.

आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है, क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती?
1: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करनी कि वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना,
0: जी जी,
1: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर मसल सी वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं।
0: जी, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
1: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली इसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
0: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी,
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है।
0: जी, और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका।
1: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं।
0: जी,
1: ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है।
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में। काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है। लेकिन इस डर से ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
0: जी जी।
1: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन

0: मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, डर बना रहता है। ये जरूरी नहीं है, ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होने का डर रहता है
1: जी।
0: तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
1: जी, बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि हम जाएंगे हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है,
1: जी हाँ,
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी पड़ता
1: जी,
0: है।
1: जी जी,
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं,
1: अच्छा,
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है
1: जी,
0: और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है
1: जी जी,
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं
1: जी।
0: सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं
1: जी।
0: सो इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: मान लेना कि नहीं अभी इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफर ही होना है, ये गलत बात है
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इम्प्रूव हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है, तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज होती है, अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है
1: जी।
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है
1: जी।
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बायपास करना सीखना पड़ता है कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बायपास कर देंगे, एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है
1: जी।
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है
1: जी।
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं, क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं
1: जी, और सारा फोकस सारा ध्यान उसी पर रहता है।
0: एब्सोल्युटली
1: कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन,
0: और फिर वो डर सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो गई और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है, इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है, स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार?
0: सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है
1: जी,
0: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है।

0: उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है. सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है.
1: जी
0: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है. तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है. दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है. सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है.
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को. कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर.
1: जी जी,
0: और उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल.
1: क्या बात,
0: बाजीराव मस्तानी से.
1: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है.

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या ताल

0: मेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं।
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है
0: जी,
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी, जी।
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना
0: जी,
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी।
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड उनकी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है
0: जी।
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे उसमें कुछ निकलेगा उनको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा
0: इसलिए मत चेकअप कराओ,
1: चेकअप मत करवाओ
0: जी, जी।
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो देयर इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है। कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं उससे निकल सकता है, लेकिन महत्व क्या है, हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है। सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन एक बात हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी जी।
1: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा।
0: जी जी।
1: ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग

0: फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसे नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
1: जी जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, कि प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
0: मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
1: बिल्कुल।
0: एट द सेम टाइम एवरी पथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक। बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर न हो, एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है।
1: जी।
0: बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है।
1: जी।
0: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं वो एक बड़ा प्रश्न है।
1: बिल्कुल।
0: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
1: जी। इस तरह की बीमारियां जो होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वो ही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
0: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके इनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है। जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट, जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है।
1: जी, तो उसे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुने।
0: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर है?
1: यहां मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी।
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल।
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट।
0: जी।
1: सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स। सो ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके

0: हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन, अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है, आप मेडिकल राय लीजिए और जरूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए।
1: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं, प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
0: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है, वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है।
1: जी हाँ।
0: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग कि जरूरी है या जरूरी नहीं है और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
1: जी,
0: अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है, कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
1: जी, तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
0: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
1: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए?
0: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है, जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप, कुछ एब्डोमिनल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है, प्लस अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट मिलने लगी है। पहले दवाइयां नहीं थी, अभी दवाइयां से ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
1: जी बिल्कुल।
0: और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
1: जी
0: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी, जी।
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
1: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग

0: करते ही हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है या
1: लाइलाज? बहुत महत्व की बात आपने कही है
0: जी।
1: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है
0: जी जी,
1: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है।
0: अच्छा।
1: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है
0: जी।
1: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में ही डिजीज रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोनल इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
0: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
1: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
0: चंचल चितवन।
1: चंचल चितवन
0: बेहतरीन गाना,
1: अच्छा गाना है
0: जी। मुकेश की आवाज में भी,
1: मुकेश
0: है
1: की आवाज में, लता जी की आवाज में भी है
0: जी।
1: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज
0: सुनेंगे। मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं
1: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: सो जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर
0: जी,
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह के किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है
0: जी।
1: सो जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी
0: जी जी,
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस। लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है
0: जी जी।
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन
0: जी।
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है
0: जी।
1: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज है जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है
0: जी जी।
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है
0: जी जी।
1: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
0: बिल्कुल।
1: सो पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। सो जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं
0: जी जी।
1: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम

0: किसी को मदद कर सके तो इससे बड़ी चीज क्या है।
1: जी
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है।
1: जी जी।
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेथ कहते हैं।
1: जी जी।
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है, अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सके तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है
1: जी जी।
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है
1: जी।
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। सो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: सो ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है।
1: जी।
0: सो ये जानना बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
1: जी जी।
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन न हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है। सो ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। सो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है, और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी।
0: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी, जी।
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूंकि यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सो सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी है। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है।
1: जी।
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।
1: जी जी।
0: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको, जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन

0: टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है. सो अगेन यहां दो तीन चीजें हैं. ऑफकोर्स लाइफ स्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है. और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं.
1: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर
0: समय पर.
1: जी, तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाए. कौन सा गाना?
0: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना.
1: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है. तो आज का ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर. फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज, पर्दे पर साधना. सुनते हैं ये गाना.

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे।
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन रेगुलर चेकअप

0: करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर बड़ा शब्द है लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है, अगेन राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए आप एक्सपर्ट को पूछिए।
1: जी।
0: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है।
1: जी।
0: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो। और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 and 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है, लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। सो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंशन एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप। आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर गुड हेल्थ एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम।
1: जी,
0: थैंक यू वेरी मच।
1: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं बाबुल सुप्रियो द्वारा गाए कुछ गैर फिल्मी नगमें।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार

0: भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आप सुन रहे हैं बाबुल सुप्रियो की आवाज में कुछ गैर फिल्मी नगमे, कार्यक्रम सुगम संगीत में।

बाबू सुप्रियो की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत कार्यक्रम सुगम संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11:30 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म है

केके की आवाज में सुन रहे थे आप ये नगमा फिल्म जन्नत से। शब्द रचना कामरान के, संगीत था कामरान अहमद का। इसी कड़ी में अगला गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म जैकपॉट से। आवाज है अरिजीत सिंह की, संगीत है शारिब तोशी का।

0: अमित मिश्रा शिल्पा राव की आवाज में सुन रहे थे आप ये नगमा फिल्म ए दिल है मुश्किल से। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक

0: नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया।

0: सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आज का ये पूरा कार्यक्रम जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के नाम।

0: अनुरोध फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाए सोहा।

0: भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम। गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और शाम 4 बजे आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी से बातचीत सुन लीजिएगा। फिलहाल आप आनंद बख्शी के लिखे गाने सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है यादों की महफिल। फिल्म आपकी कसम, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज का ये पूरा कार्यक्रम गीतकार आनंद बख्शी के नाम है। सुनिए मर्यादा फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में, रचना थी आनंद बख्शी की।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रौबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: अच्छा
1: अच्छा तो हम
2: चलते चलते एक गाना और सुन लेते हैं दुश्मन फिल्म का। ये आन मिलो सजना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, फिल्म दुश्मन, रचना आनंद बख्शी की।

दुश्मन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित

गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। और आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा दें। वैसे जो हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर सक्रिय हैं, उन्होंने ये इबारत पढ़ ली और टिप्पणियां भी लगातार साझा कर रहे हैं। इबारत यूं है कि बचपन में जब पापा जल्दी आते तो एक गुड़िया साथ लाते थे, तो लगता था जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में सिमट आई हो। फिर दुनिया बड़ी हुई, समय और मौसम बदला, साथ मिला सजना का, नसीब खुशियों से भर गया। पिया का इंतजार करना भी सीख लिया मन ने, कभी घटा बनकर यादें बरसी, कभी गुल और बुलबुल की तरह मोहब्बत ने गीत सुनाए। दिल ने किया सवाल, छोड़कर प्यार का दामन भला कहां जाए, तो एहसास आज भी साथ है वो। जुल्फों की छांव हो या मोहब्बत की महक, दिल की दुनिया

साथ है वो। जुल्फों की छांव हो या मोहब्बत की महक, दिल की दुनिया इन्हीं खूबसूरत लम्हों से आबाद रहती है। होठ गुनगुनाते हैं, जाने क्यों लोग करते हैं मोहब्बत, ओ मेरी शाहे खुबा, और भी बहुत सारे गाने। और बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं और शब्द तो बहुत जल्द पकड़ लिया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज तो आपने परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। भाई इसे लीक करना नहीं कहेंगे, इसे तो हम ये कहेंगे कि आप की त्वरित बुद्धि ने बहुत जल्द पकड़ लिया कि आज के इस इबारत में कौन से शब्द हैं और कौन से गाने होंगे। तो जरा ये देखिए, सुनिए और बूझिए कि ये गाना भी आपने चुना था या नहीं। इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्म मेरे हमदर्द मेरे दोस्त। इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात हो तो जरा बताइएगा हमें। जरा गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम बूझिए।

घटा सावन सजना कौन कौन से गाने हैं, इन शब्दों पर याद किया क्या आपने? जरा लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद हो वो भी लिखिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना था। हमने पूछा था आपसे गीतकार संगीतकार का नाम, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। मजरू सुल्तानपुरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बहुत सारे श्रोताओं ने पप्पा जल्दी आ जाना सात समंदर पार से इस गाने के लिए लिखा है बहुत कुछ। और बहुत सारी टिप्पणियां आई है कि बचपन की गुड़िया, बचपन का संसार, लेकिन आज की इबारत में और भी तो बहुत कुछ है। तो वो जो टिप्पणी है हम पढ़कर सुनाएंगे जरूर, और वो गाना भी हम सुनवाएंगे, क्योंकि इतने सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारी मजबूरी बन गई है वो गाना सुनवाना। और कौन से गाने आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं? और आज एक खास बात और है, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बचपन के बारे में ऐसा लिखा कि लोग कहने लगे, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। महबूबा की तारीफ, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। और पूरी पूरी लाइनें भी लिखी है और आगे लिखा है इन्होंने कि आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना नामुमकिन है। बिल्कुल सही फरमाया है। और अब बात आनंद बख्शी की चली है, आज उनकी याद का दिन है। विविध भारती से उनके बहुत सारे गाने प्रसारित किए जा रहे हैं और शाम को 4 बजे भी उनके बेटे राकेश बख्शी से बातचीत आप सुन सकते हैं। तो चलिए फिर एक गाना आनंद बख्शी साहब के नाम, रोशन का संगीत है, आपको बूझना है फिल्म का नाम। इस गाने को सुनते हुए आपके जहन में कौन कौन से और गाने कौंध रहे हैं हमारी इबारत से जुड़े हुए? फिल्म का नाम बूझना है आपको, फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। देवर लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना, रोशन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही, और ये भी लिखा है कि धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर होते हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम पहला गाना सुन रहे थे चलो सजना तो हमें याद आया काली घटा छाए प्रेम रुत आई, और एक श्रोता ने लिखा है कि इस गाने को सुनते हुए बाबुल की दुआएं लेती जा ये गाना हमें याद आया है। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है इस बात के लिए जब हम अब हम लाइन से वो टिप्पणियां पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन हमारा आपसे आग्रह ये है कि और भी जो इसमें शब्द हैं उन शब्दों से जुड़े हुए गाने भी आप लिखें और उन गानों से जुड़े हुए भी टिप्पणियां आप साझा करें। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा बचपन तो छोटे से ग्रामीण परिवेश में ही गुजरा है जहां कभी कभार रेडियो सीमित समय के लिए सुनने को मिलता था। मनोरंजन के नाम पर भजन मंडलियों और गीत, सावन के झूले, बहनों का गरबा और नदी में नहाने जैसे कार्यों के करते पढ़ाई के लिए कब हरदा पहुंच गए कुछ याद ही नहीं। हाँ याद है पिताजी का झूले पर बैठकर अक्सर गुनगुनाया जाने वाला गीत रुमझुम बरसे बादरवा, रुमझुन बरसे बादरवा मस्त घटाए छाए, और पिया घर आजा फिल्म रतन जोराबाई अंबाले वाली की आवाज में। आज के प्रोग्राम की सूची में ये गीत निश्चित ही सम्मिलित होगा ऐसा अनुमान है। भाई अनुमान हो सकता है, कई बार सच होता है कई बार गलत भी होता है, तो आप इंतजार कीजिए पूरे प्रोग्राम के दौरान। हाँ लेकिन ये जो झूले वाली बात याद आई है तो जरा हमारे बाकी श्रोता भी बताएं कि क्या आप भी झूले पर बैठकर पींगे मारे हैं, वो झूले वाली बात याद कीजिए, सावन वाली बातें याद कीजिए। गानों के साथ तो हम जाने कहाँ कहाँ की सैर कराते हैं मन के उड़न खटोले से, तो आप जरा याद कीजिए वो गाने और साझा कीजिए झूले वाली बात सावन वाली बात। अब एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में न जाने कितने मूल्यवान उपहार बिखरे पड़े हैं मगर पापा की लाई हुई वो प्लास्टिक की गुड़िया से ज्यादा अच्छा और कोई उपहार है। गुड़िया की शादी गुड्डे से और विदा के समय जब वो गुड्डे वाली सहेली कहती अब ये गुड़िया हमारी हुई, तो सारी दोस्ती भूल कर अपनी गुड़िया के लिए लड़ाई करना, तब बीच बचाव में मम्मी को आना पड़ता। क्या बात है भाई, वे कहती कि शादी हुई है तो गुड़िया अब गुड्डे की हुई ना, फिर न जाने का बचपन बीत गया और फिर मिला एक साथी जिसके साथ चलते जीवन के सच्चाई से सामना हुआ। यादें भी न जाने कितनी अजीब होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, बस अचानक किसी गीत के सहारे किसी पुराने मौसम के साथ दिल में उतर आती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अब हमारा साथी है, हमारा हमसफर है। तो अपने हमसफर से जुड़ी हुई बात भी बताइए, विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी साझा कीजिए कि आपके जीवन साथी के साथ दिन में कितनी बार तकरार होती है और कितनी बार प्यार मोहब्बत की बातें होती है, ये भी साझा कीजिए। भाई ये तो प्रोग्राम ही ऐसा है कि एक परिवार की तरह हम एक दूसरे से बोलते बतियाते हैं। फिलहाल अब जो वो गाना आ रहा है जिसकी फरमाइश बहुत सारे श्रोताओं ने की है और बहुत सारे श्रोताओं ने इससे जुड़ी हुई याद साझा की है, टिप्पणी साझा की है।

तकदीर फिल्म का गाना था लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और साथियों की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना और बहुत सारे श्रोताओं ने लंबी तादाद में इस गाने का जिक्र किया और अपने पापा के तोहफों का जिक्र किया। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का साथ होना ही सबसे बड़ा उपहार होता है, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गुड़िये गुड्डे से तो नहीं खेल पाया हूं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी मुझे बताती हैं कि वो उनकी बहनें बचपन में अपनी गुड़िया और दूसरे बच्चों के गुड़िया के साथ आपस में मिलकर शादी कराते थे, खूब मजे करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब के लिए लिखा है कि आनंद बख्शी जी ने गीत सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। उनके शब्द इतने सहज थे कि हर कोई उसमें अपना एहसास, कोई रिश्ता, कोई याद ढूंढ लेता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सादगी में गहराई और हर दिल तक पहुंच जाने वाली बात। बिल्कुल सही फरमाया है कि सादे सीधे सादे अंदाज में, सरल भाषा में गहरी बात लिखना बहुत मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो पूरी लिस्ट वायरल हो गई है, आप तो प्रश्न करते रहिए, जवाब देते रहेंगे। तो हमने तो आपसे प्रश्न किया है कि अब बताइए कि आनंद बख्शी साहब के कौन से गाने इस वक्त आपको याद आ रहे हैं। कोई एक गाना अगर आपसे कहा जाए, चुनकर बताइए कि आपका बेहद पसंदीदा गाना, तो क्या आप सब बता सकेंगे? अगर बता सकते हैं तो जरा बताइए, हम भी देखते हैं।

और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब वो शख्सियत हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में कभी एक जैसा किसी का नसीब नहीं होता है। जो देवर फिल्म का गाना सुनवाया था उसके लिए और झूले के लिए इन्होंने लिखा है कि सावन के महीने में जब झूले पर पींगे मारते थे तो बीच में बैठी लड़कियां गाना गाती थी, पिया मेहंदी मगाए द मोती झील से जाए के साइकिल से, ये याद है मेरी दीदी को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पींगे भरते हुए लोगों को देखा है और स्वयं तो दरवाजे की कुंडी में चादर बांधकर तकिया लगाकर घर में झूला झूला गया है, भाई क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरी गुड़िया का जन्म दिवस है, आज वो 13 बरस की हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि पापा जल्दी आ जाना, ये गाना इतना भावपूर्ण है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियां लिख भेजी है। अब देखते हैं कि हमारे एक श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि गाने हैं सात समंदर पार से, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तेरी जुल्फ के छांव में दिल मेरा खोना चाहे, और छोड़कर तेरे प्यार का दामन। फिर आगे लिखा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं ओ मेरे शाहे खुबा। भई गजब, इतने सारे गाने तो आपने बूझ लिए, तो और भी श्रोता और भी गाने बूझे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में बहुत सारे भावनात्मक शब्द हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्यार और एहसास। इन शब्दों पर कई सुरीली गाने सुनवाए जा सकते हैं, गुड़िया लाकर देने की बात तो दिल को छू गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पापा की लाई हुई उस गुड़िया से शुरू हो रही है जो भावनाओं से जुड़ी हुई, पापा की गुड़िया कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, समय कितनी जल्दी हाथों से निकल गया। हम अपनी बेटी को उसी गुड़िया के रूप में देखते हैं जो जल्दी ही विदा होने वाली है, ये सोचकर आंखें भर आती हैं। और वो पापा भी अपनी गुड़िया की विदाई के कामों में व्यस्त हो गए हैं जो कभी उसके लिए गुड़िया लाया करते थे। अब देखिए ना, एक गाना कितने सारे श्रोताओं के मन की भावनाओं पर दस्तक दे रहा है, कितने सारे श्रोताओं की आंखें नम कर रहा है, कितने श्रोताओं के जज्बात से जुड़ गया है ये गाना, उनमें से एक तो हम भी हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा भावों को बदलते हैं और जुड़ते हैं, थोड़ा सा अपने बचपन के संसार को आगे बढ़ाते हैं, जब प्यार मोहब्बत की दहलीज पर हमारा मन पहुंचता है। बताइए फिल्म का नाम, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम बूझना है आपको।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसर जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया जया मुखर्जी और आशा पारेख। कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बात झूले की चली है तो वो 13-14 साल की उम्र का झूले की मस्ती याद आती है। आज गांव में 2-3 पेड़ नीम के हैं, पहले तो हर घर के दरवाजे पर 2 जरूर होते थे। सावन आते ही बांस के डंडे से रस्सी बांधकर झूला लटकाते और नीचे एक पटरा बांधकर पींग मारते। फिर शाम को अक्सर गांव की लड़कियां झूलने आती हैं और हम सब मना करने पर भी तेज पींगे मारकर झूला ऊपर ले जाते थे। और कजरी गाई जाती थी, चैती गाई जाती थी, है ना? तो कौन सी कजरी, कौन सा गाना अगर याद है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता हमारे बहुत सख्त थे, बाहर का खाने से रोकते थे, यहाँ तक कि गुलाब जामुन भी घर पर बनवाया करते थे माताजी से और मांग पर भुनी मूंगफलियां दिलाया करते थे। बस स्मृतियों में ही सब पल है और जाने वालों को भला कौन रोक सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को जितना हो सके डांट मार से नहीं प्यार से समझाने में ही समझदारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बच्चे के हाथ में गुड़िया पकड़ा देती है जिससे बच्चा उससे खेलने लगता है और रोना बंद कर देता है। माँ बच्चों को झूले में सुलाकर उस पर डोरी पर गुड़िया लटका देती थी जिससे झूले के साथ गुड़िया हिलती रहती थी। पर अब वो बचपन है क्या, अब वो गुड़िया है क्या? अब तो नकली गुड़िया आती है और अब मोबाइल है, अब माँ छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें अपने आप से बच्चा स्क्रीन बदलता रहता है, बस यहीं से स्क्रीन की लत लग जाती है। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना वो भी था कि बिजली, बंगले, सड़क, गाड़ियां, मनोरंजन के तमाम साधन बिल्कुल नहीं थे, फिर भी सजनी को साजन का और साजन को सजनी का इंतजार होता था। बिल्कुल सही बात कही है आपने। कैसे मिट्टी के तेल से जलते माटी के दीपक की रोशनी में हम लोग मिले थे, बड़ी मान मनोबल के बाद वो हमारे पास तो आई और शरारत से दिया बुझा दिया कि हमें शर्माती है, फिर अंधेरे में दीपक रोशन हुआ था और जिंदगी भर का साथ बन गया और आज बेटे

0: नाती पोते बहुत कुछ है। तो सचमुच तब मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। रिश्ते बड़े प्रगाढ़ होते थे, आंखों की भाषा होती थी, होठों की भाषा होती थी। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने आनंद बख्शी के अनगिनत गाने लिखे हैं और उनमें से एक गाना हमने चुना है ये। तो आपने क्या ये गाना चुना था, याद कीजिए और बताइए इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म महबूब की मेहंदी, गीतकार का नाम तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, संगीतकार का नाम जरा बूझिए।
1: Is it love?

महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं? भाई आप अपने अनुभव ही तो बताइए कि आपने अनुभव किया ऐसा कुछ कि आपने कभी ये गुनगुनाया हो गाना किसी और के लिए या किसी ने आपके लिए ये गाना गुनगुनाया हो। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि धन्यवाद आपने ये गाना सुनवाया, मेरी भी पसंद का गाना था। किसकी पसंद नहीं हो सकती भला। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि कौन सा गाना पसंद है तो ये गाना भी आपकी पसंद में शामिल था। और बहुत सारे गानों का जिक्र किया है हमारे श्रोताओं ने और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी जैसा गीतकार कोई हो नहीं सकता, उनके गीतों में जो सहजता है। तमाम श्रोताओं की बात इन वाक्यों में मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि आनंद बख्शी साहब का एकदम सदाबहार दिल को सुकून देने वाला ये गाना था। अब हमने जो झूले की बात पूछी थी, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि कुछ पारिवारिक परंपरा होती थी, बच्चों के लिए मोटे कपड़ों का झूला छत की कड़ी से बांधकर उसमें छोटे बच्चों को सुलाते थे, लकड़ी का पालना वर्जित था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दो बेटियां हैं, दोनों का विवाह हो चुका है, मैंने करीब 10 वर्ष तक उन्हें चॉकलेट नहीं खाने दिया और इस बात को मेरी बड़ी बिटिया ने एक वाकया बताया कि उसकी एक सहेली के दांत पूरी तरह खराब हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमने पूछा था कि झूले पर कौन सा लोकगीत गुनगुनाते थे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिर्जापुर कैल हो गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमु सोने की थाली में जेवना परोसल, और दो तीन लाइन और लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की वो प्यारी यादें, पापा का प्यार, धीरे धीरे जवानी के दहलीज में बढ़ते कदम, हम सफर का साथ, खट्टे मीठे अनुभव, सब कुछ जीना सिखा दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक पिता के द्वारा लाई गई गुड़िया सचमुच हर बिटिया के लिए एक अमूल्य उपहार होता है, ये वात्सल्य रस की प्रतीकात्मक और कोमल अभिव्यक्ति है जिसमें पिता का निश्चल स्नेह, हृदय से जुड़ी भावनाएं रहती है, यहां गुड़िया का भौतिक अस्तित्व ममता की मूर्त की भावना को दर्शाता है। सचमुच एक गाने ने कैसे आप सबको द्रवीभूत कर दिया है। और कौन ऐसा शख्स है जो ये गाना जो हमने सुनवाया था पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना लाना पापा जल्दी आ जाना, सचमुच एक मर्म है इस गाने में। और अभी तो हमने महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनवाया, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात आपके जहन में है तो वो भी बताते चलिए। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है गुल और बुलबुल वाला गाना कब आएगा, ये आ गया, लेकिन आपको पहेली का जवाब देना है कि कौन है इसमें हीरो कौन है हीरोइन। त्वरित जवाब दीजिए क्योंकि आपको पता होगा शायद हीरो हीरोइन का नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं आप।

क्या ये गाना सुनते हुए आपको कोई कहानी भी याद आती है? कहानी की शक्ल में ये गाना लगता है ना।

शशि कपूर और नंदा इस फिल्म में हीरो हीरोइन थे, ये हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया, त्वरित जवाब आया और लंबी तादाद में अब तक जवाब आ रहा है। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिप्पणियां खत्म नहीं हो रही हैं। शशि कपूर और नंदा, एक श्रोता ने लिखा है, बहुत

की मासूमियत भरा सुपरस्टार हिट गीत है मोहम्मद रफी और नंदा की आवाज में। और एक श्रोता ने लिखा है कि अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में शशि कपूर का और नंदा का। कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना सुनने में खूबसूरत है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत था। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां तक मुझे याद है हमारे नाना जी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, नानी और दादी जरूर सुनाती थी, देश के वीर जवानों की कहानी सुनाया करती थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अपने क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुनाना जैसे हम भूल ही गए हैं। बच्चों को जरूर सुनाइए ऐसी कहानियां। कहानियां सुनने से एक तो उनकी कल्पना शक्ति में विस्तार होता है, वरना तो वो मोबाइल में जो कहानियां देख लेते हैं उसमें उनकी सोचने की क्षमता कमजोर होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव की सच्ची घटना है, दो लोग गुल और बुलबुल की तरह प्यार करते थे, जब उन्हें घर वालों ने एक न होने दिया तो वो दोनों साथ में जान दे दिए। उफ, ये तो दर्दनाक बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि सच में ये गीत कहानी जैसा लगता है, जैसे कोई अपना पराया सा साथी कुछ बता रहा हो और हम उनसे हर बात बड़े ही भोलेपन से पूछ रहे हो। ये आनंद बख्शी की गीतकारी की कमाल है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम ऐप पर सुन रहे हैं गाने तो आधे मिनट देर से पहुंचते हैं, लेकिन हम जवाब तो रेत देते हैं। आ गया आपका जवाब भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपत्नी के साथ अगर नोकझोंक ना हो तो जीवन में मजा ही ना आए। मैं तो जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूं तो वो लेक्चर शुरू कर देती है और मन ही मन में हंसकर खुश होता रहता हूं। भाई ये तो बड़ी शरारत है। अगर आपकी श्रीमती जी सुन रही हो तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर उन्हें गुस्सा आता हो तो गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गौरवशाली बचपन के गुड्डे गुड़िये की गाथा गान कर जवानी के दहलीज के दहकते दहन को दर्शाती है आज की ये इबारत। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस जमाने में गाने बनाने वालों ने बेहतरीन गाने बना दिए और गीतकार आनंद बख्शी के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब बहुत रोते थे तो हम दोनों पति पत्नी उसको चादर पर सुलाकर उसके दोनों कोने पकड़ लेते थे और उसे झूला झुलाकर सुलाया करते थे। भाई झूले की बात बहुत हो गई है और बचपन के तोहफों की बात हो गई, पापा के घर आने की बात हो गई है, अब जरा ये बात हो जाए कि प्यार मोहब्बत जब आपने किसी से किया और आपकी पत्नी या आपके पति ने क्या बातें कही। ये गाना सुनिए और कभी आपने भी इस तरह की बात कही एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी में प्यार बहुत

प्यार का इजहार बहुत जरूरी है, तो क्या आप अपनी पत्नी से या अपने पति से इजहार करते हैं प्यार का? उम्र के किसी भी पड़ाव में प्यार का इजहार किया जा सकता है। फिल्म का नाम जरा बताइएगा।

फिल्म थी वो कौन थी, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। ये हमारा सवाल था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मनोज कुमार और हेलन अभिनेत्री, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि कमाल है ये गाना, हमने भी सोचा था, मेरी पसंद का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कहानियां सुनाने का बहुत ज्यादा शौक है, नाना नानी दादा दादी तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे, मगर हां उनकी कहानियां जरूर याद आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 38 साल हो गए ये कहते और दोहराते हुए, अब तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं पापा डिजिटल युग में नया गीत अपनाइए। उनको समझाइए कि हम अपने युग का गीत गा रहे हैं, आप अपने युग का गीत गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाइए जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी रेडियो पर विविध भारती सुन रही है और आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही है। क्या बात है भाई, हमारा कहना और बोलना सफल हो जाता है जब हमारी बात से कोई मुस्कुराए और हमारे बजाए गए गानों से किसी बात से उदास हो या प्रेरणा ले, तो हमारा प्रोग्राम करना सफल हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत ऐसी होनी चाहिए कि पिरोए गए शब्दों का आकलन सहजता से हो जाए, उस पर लिखे गए गाने खूबसूरत हैं, आज के सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारा ये दूसरा गाना पसंद का, किसी ने लिखा है चौथा गाना, किसी ने लिखा है तीसरा गाना। क्या बात है भाई, हमें भी अच्छा लग रहा है जानकर कि हमारी और आपकी पसंद मिल रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा, शुद्ध और साफ उच्चारण आवाज में सुनने को मिलेगी आपकी बातें। क्या बात है भाई, आगे लिखा है कि गुड़िया बुलबुल गुल दुनिया घटा वगैरह शब्द पर गाने होंगे और बहुत सारे इमोजी इन्होंने लगाए हैं, फूल पत्ती दिल और हाथ। तो आप बताइए कि क्या आप जब अपनी बात कहते हैं आज के जमाने में अपनों से, तो क्या इमोजी से काम चलाते हैं या अपने दिल की बात शब्दों से कहते हैं। अब सुनिए ये गाना आ रहा है कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर, बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है हमारी आज की इबारत में ये शब्द है, तो सुनिए ये गाना और बताइए जरा गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म रतन, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है, जोराबाई अंबाले वाली।

रतन फिल्म का गाना जोराबाई अंबाले वाले की आवाज में, रचना थी डीएन मधुक की, संगीतकार नौशाद, और ये हमारा सवाल था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही जवाब, कुछ श्रोताओं ने गलत भी लिखा है, लेकिन इतने जवाब नहीं आए जितने कि अन्य गानों के लिए आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो प्यार के इजहार का सबका अलग सा अंदाज है, पर होता बड़ा ही प्यारा है। रूठना मनाना, कभी कभी बात न करना, हमारे साथी तो रूठ कर खाना नहीं खाते थे, बड़ा ही मुश्किल होता था उन्हें मनाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या पूछ लिया, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पति जी से बड़ा प्यार और इजहार सुनने को मिला, लगता है सारी कमी पूरी हो गई। जब प्यार से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने सोचा तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, अभी मैं 74 वर्ष की हूं। क्या बात है भाई, आपने तो हमारे जज्बात को छू लिया, और अच्छा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे से आप इजहार करते हैं और ये बात आपने यहां पर लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज बहुत सारे गाने हमारे और आपके मिले, हमें भी अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी इमोजी भी हम भेज दिया करते हैं, बस अपने जज्बात का इजहार जरूरी है। अब जरा घड़ी की ओर देखिए, घड़ी की सुइयां तो आगे निकल गई है। चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी फूल पर। फूल प्रकृति की सबसे सुंदर और मनमोहक रचनाओं में से एक है। रंग बिरंगे फूल धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अपनी सुगंधित स्पर्श से वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। फूलों को देखकर मन में प्रसन्नता, शांति और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए फूलों को प्रकृति का मुस्कुराता हुआ उपहार भी कहा जाता है। फूलों का जीवन भले ही छोटा होता है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि कम समय में भी अपने गुणों और सुंदरता से संसार को खुशियां दी जा सकती है। फूल बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी खुशबू और सुंदरता प्रदान करते हैं।

हमारे जीवन में फूलों का विशेष स्थान है। पूजा पाठ, त्योहारों, विवाह समारोहों और शुभ अवसरों पर फूल का उपयोग किया जाता है। हर फूल अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फूल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों से मधुमक्खियां और तितलियां आकर्षित होती है, जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। फूलों से हमें जीवन में कई तरह की सीख मिलती है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अच्छाई और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फूल हमें विनम्रता, मुस्कान और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं।

सूखे हुए फूल केवल मुरझाई हुई पंखुड़ियां नहीं होते, वे अपने भीतर बीते हुए पलों की अनगिनत कहानियां संजोए रखते हैं। किसी किताब के पन्नों में दबा हुआ फूल किसी पुराने उपहार की तरह हमें उन खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाता है, जहां भावनाएं हमेशा ताजा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है, तो वह केवल फूल नहीं बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव हमारे पास छोड़ जाता है। समय के साथ फूल की खुशबू भले ही कम हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन उससे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी पहली मुलाकात की निशानी, कभी किसी खास अवसर की स्मृति, तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

0: आज की त्रिवेणी यहीं पर संपन्न होती है। सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामथे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प

0: को दोहराया।
1: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
2: हर तरीके से अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है, तो भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
3: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
4: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट

0: जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहडू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंध्रिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय MSHPC अरावली @

0: .com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामचे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

लोफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आज के सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को। सुनिए अगला गीत उन्हीं का लिखा हुआ किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

0: कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली पहनी,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमक हराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपने रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ही सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं।
2: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को और साथ में मंजरी आपको भी
1: जी।
2: और मिलना जुलना तो होता ही रहता है, देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है, कभी हम मिल पाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग उसमें खुश होते हैं, तो मिलकर भी बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए
2: कैसे अभी मौसम बदल रहा है ना, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है, तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही प्यार का मौसम भी होता है।
1: बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक विषय अपने विषय बता के फिर हम आगे हैं।
2: अरे बताओ।
1: तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई, ये इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां भाभियां मौसी चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोढ़ा लाइफ लेमोनेड और यूएलटीए के स्कूल के संस्थापक है, इनके बारे में हम बातें करेंगे।
2: ठीक है।
1: और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे,
2: इस पर बिल्ली खम्बा नोचे।

0: अच्छा
1: तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखे।
0: हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा है उनसे हम ये कहना चाहेंगे, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना, या आपके सामने खड़ा कोई इंसान है आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे।
1: बिल्कुल,
0: तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट बन सकता है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझे, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना। लेकिन उससे पहले

0: से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता, ना कहीं जाने का मन करेगा। और एक तरह से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं, हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है। जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं। और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी?
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, बचपन का जो बिताया पल है, वो घर, शहर, अगर मोहल्ला की बात करें, गांव है, गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे। कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती हैं और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती।
0: बिल्कुल। और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था। या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहां रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने या मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना और पेड़ों पर झूलना, आदि बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तानों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना? जैसे ऋतुएं बदलती हैं, परिवेश, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई सुविधाएं आ गई हैं, रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में। कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं। घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है और सब ऑनलाइन भी हो गया है।
0: बिल्कुल। और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी की यादों को सजो कर रखें, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी है। और यादें जहां हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है, इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और न ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिएं और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
0: और हमारे साथी भी देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती अपनी इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी बात
1: है। वही वो ना, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना।
0: बिल्कुल।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए

तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है और ना किसी

0: लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
1: बिल्कुल मंदाकिनी जी। और देखिए, यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे। तो लेते हैं एक अंतराल,
0: ठीक है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में, तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखती है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सवेद सलेटी से वर्णमाला, बाराखड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती है, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती है, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं, कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं, लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता, यादों को दिल में संजोकर रखें लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिये और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखते हैं कि यादों से सुकून कहां पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं, यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बाराखड़ी बहुत ही प्यारा लिखा है जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहां, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं, ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा
0: जी,
1: है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है, कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता, फिर उसको जब छोड़ते हैं नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने। यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है
1: जी।
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहां खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं है।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली बहुमुखी प्रतिमा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, पीएचडी शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कॉरपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक निदेशक और जेएनयू में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित एआईएमएसआर आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी है। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। पीडी प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने स्वाश पीडी प्राइवेट लिमिटेड इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी। और ये संस्था युवाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट

0: ये आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व पेरेंटिंग व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉ स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
0: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
1: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
0: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं, और जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब पहले का समय होता था मंजरी
0: जी,
1: आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो है घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं, जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती है। खासतौर से महिलाएं जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया, परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि भी सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है, चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है। लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी, बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से तह की भी साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल, और उस बक्से में न जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की तश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी, और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन, यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था। जब संदूक

0: खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोज लेती और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती है।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही है हमारी सखे और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ वो भी संजो कर रखा होता था, छोटी पोटली 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी छत पर जाकर, कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल, और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना और पापड़ चिप्स कचरी यानी क्या क्या बढ़िया है इन सबको बनाना और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था। और दिन महीने साल साल उसकी उठाधाई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी और सब काम एक अभियान जैसे होते थे और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया है।
1: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं, सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे, तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भागदौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे, हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तकिए, सिराने पर भी वो रखे होते थे,
0: आराम से मिल जाते थे आराम से, है ना।
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता था।
0: तो ये भी एक सही एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूद दी हो।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी
0: जी।
1: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहां बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है, कभी चश्मा यहां, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहां है सामान, कहां है मेरे मोजे, कहां है मेरा मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
0: बिल्कुल, और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही है, थकी आई है तो खाने में भी समय देना है उन्हें, तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है।
1: बिल्कुल, नौकरी पेशा जो महिलाएं हैं ना उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी, जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती है। तो आज सुविधाएं बढ़ गई है, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर की हमने सामान उठा के घर में भर लिए और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है।
0: यानी कहने का मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए।
1: हाँ, तो मंजरी इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है और घर स्वर्ग जैसा लगता है।
0: बिल्कुल, और हम लोग सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ दुमंज जी, अभी हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि वे हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जूठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहां जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहां मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है, लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है, मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहां लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर

0: सफाई होती, बेकार वस्तुओं की पहचान होती और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठापटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रखकर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रखकर देखते हैं और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
0: और एक लिखते हैं कि उफ घर में सामानों की उठापटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यही रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम, अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही। कुछ शरीर की भी कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा अभी यहां से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
0: ये भी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर। तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहां नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गई।
0: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
1: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे क्या है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती, शर्मिंदा होकर पास खड़े खम्बे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मन देता है और मतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो, ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खीज किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खीज बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुजराती कि लाजवाने बदले गाजवो, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है।
0: जी वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहां उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही, उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने कुपचिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली

0: हम्बानोचे।
1: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खम्बे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खम्बा नोचने लग जाती है।
0: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं गीत।

0: तो मंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

सखी सहेली।

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया,
1: जुबान पे दर्द भरी दास चली आई,
0: कभी थपकी दी और बैठ

0: कभी इन गानों ने हमारी खुशियों की साझेदारी की।
1: जय जय शिव शंकर, माता लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का।
0: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत का इजहार किया।

आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत

0: सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है, एक और कनेक्शन है जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यही से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी
1: एक गली में, दिल्ली में घूमते घूमते, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है आप जानते हैं क्या, वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने
0: किया जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ, भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, तो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ।
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ। पवन चले पुरवाई।
0: हाँ।
1: क्योंकि इसे कि हमारे खुले गांव में,
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबर्ड में उस बॉटल के अंदर।
1: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
0: अम्बुआ की डाली पे गाय मतवाली, कोयलिया काली निराली,
2: अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
1: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है, एक किताब है बख्शी साहब की कविताओं की जिसमें वो संग्रहित
1: है, मैं जादू हूं चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी मेंशन की हुई है।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटिए, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीज।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: और ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल। हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी। हाँ,
1: वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था,
0: खराब माना जाता।
1: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
0: अरे गजब।
1: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे सीट कहां बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में। तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने में नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
0: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त,
1: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे, और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए। तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको
0: जी जी।
1: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे, और उस पर एक्टिंग भी करते थे।
0: वाह वाह।
1: क्योंकि जब मोहल्ले में रामलीला होती थी
0: जी,
1: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग, मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने में हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर को बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
0: और उनका हाफ बंबई जाने का था।
1: हाँ, फिल्में देखते तो पता चलता है ये कहां बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है,
0: समुद्र के पार है,
1: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं।
0: हाँ।
1: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
0: एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ गया कि उसकी मंजिल बंबई है।
1: तो जब वो 14 साल के थे उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर मार्शल।

0: क्लैन।
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो?
0: कैडेट, यू वाज अ नेवल कैडेट, और उनकी भर्ती हुई दो शिप थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिप में पढ़ाई जाती थी, नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था?
0: हाँ, 1942। तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
1: ये जो बगावत थी नेवी
0: बगावत
1: की, ये बहुत मशहूर है,
0: बहुत मशहूर,
1: इसका इतिहास में दर्ज है।
0: पहली बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके कू बन जाता है, लेकिन भी कू
1: बिल्कुल,
0: तो दैट इज वेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे। उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बम्बई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। तो उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी,
0: बहुत कम थी
1: जी।
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं
1: जी।
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैव टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है और एक जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है
1: जी।
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट
1: जी,
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकेंड लाइफ दी कि तू जा
1: जी,
0: तो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में।
1: और छोड़ दिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात,
0: रेस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
1: अब जब घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली फिर तो इमीडिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का अब ये सपना था कि हम बम्बई जाएंगे कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और बाकी दो
0: का कुछ था उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे,
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बोतल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और उससे पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहां जाएगी, यहां से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बम्बई पहुंच जाएगी।
1: हाँ।
0: और हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5-10, 6 रुपए, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने 2-3 एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त, घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल जाने के लिए सब जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे अरे,
0: तो उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहाँ से निकालो, ये यहाँ खराब हो गया गांव में,
1: यहाँ गलत संगत
0: होगी इसकी। हाँ। इसके बेकार से सपने हैं इसके बम्बई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में डिसिप्लिन होता है।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना,
1: करें
0: ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्हें वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे, कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटीवीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, तो किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है, अपना हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति दूध का
0: शौक, मलाई, गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, और रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा, यार इधर तो खूब पिटाई हो रही है लेकिन यार दूध भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी के पीछे छुप जाते थे
1: ताकि रिंग में ना आना।
0: हाँ, वो रिंग में नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो तीन चार महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए, लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू ज्वाइन न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर, इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में। सर चार पांच महीने हो गए, चार पांच महीने हो गए
1: अभी तक मेरे हाथ से,
0: अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने,
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से,
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया।
1: हाँ,
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है, और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो।
1: हाँ,
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजीशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से, तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन, गहने वहने, हाँ, खाना जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल, तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर टू थ्री फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए रावलपिंडी। पता नहीं बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डू नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, दो तीन महीने में वापस आ जाएंगे,
1: क्योंकि
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ चार पांच दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि पांच बहन है और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड टू

0: ब्रदर्स फ्रॉम द सेकंड मदर,
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सबने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, एक क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में रातों रात वहां से जब निकले। अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए
0: वो
1: बहुत
0: तस्वीर ही उनकी मेमोरी थी। कि ये उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, और हर एक बच्चा अलग होता है। कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात।
0: तो मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं लिख सकता ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, डैडी के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती ना।
1: यस बिल्कुल।
0: हाँ हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी हमें बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपनी मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है। हमसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है। तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता,
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से वो थी पिंडी की मिट्टी,
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा उनके जाने के बाद, जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे, उसमें एक बोतल नहीं मुझे वापस मिली
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है।
0: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे
1: जी,
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने वाले।
0: आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे,
1: वो उनकी जिंदगी

0: और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जो रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी।
0: जी जी।
1: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना 8 स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो वो फिर वापस आ गए थे।
0: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुनः शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप।
0: सरकार ने भेजा?
1: सरकार ने। फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र शूट नहीं किया। दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा। तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो पुणे से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिए गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में है, तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके।
1: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है।
0: जी जी।
1: और टाइपराइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अवर नेम। सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टाइप हो रही है एनिमी से, इफ द एनिमी रिकॉर्डिंग आवर,
0: तो वो नहीं जान पाए,
1: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
0: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है।
1: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वाकई में आजाद थे वो।
0: क्या बात,
1: आजाद दिल के।
0: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
1: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
0: हाँ,
1: ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
0: ट्रेनिंग वहां हुई,
1: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई। तो उनका जो सर्टिफिकेट है, जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब में,
0: जी जी,
1: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो आपका गांव है।
0: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर। आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के।
1: लेकिन कमाल की बात, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन।
0: तो वो टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वाज लाइक दैट।
0: नहीं, लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट,
1: सब कुछ, लेकिन
0: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
1: फोबिया होता है, शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चुपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया, वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
0: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
1: घर में भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। बोलता रही अब जाना, खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है, या गिती गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
0: तो एक अकेलापन आ जाता
1: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
0: जी जी।
1: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
0: यस।
1: अकेलापन में नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ
0: कि मेरा तो कोई नहीं है,
1: मेरा तो कोई नहीं है।

0: नहीं मुझे छोड़ा गया है,
1: हाँ,
0: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई, मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो एक जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनी बडी रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रांग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की।
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो वेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज्ड दैट शी डाइड, बिकॉज़ शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी।
1: जी जी, लेडीज की बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म होता है, जख्म बढ़ते नहीं, हर जख्म नहीं बढ़ता।
1: वाला और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों?
0: हाँ, दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था, 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था? ही सेड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डर बाद में आया, कब आया? जब शोहरत आई। शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल।
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरा पे बैठते थे, जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो।
1: अरे गजब।
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंट्रा स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे। क्या बात है।
0: एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शी साहब को देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते।
0: हाँ, क्यों जाते थे?
1: हाँ।
0: तो कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक,
0: तो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी।
1: बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वाज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट इज व्हेन यू जॉइन द आर्मी, इट वाज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी, इट वाज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था, उसने रूप लेना शुरू किया।

0: कैसे? उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर।
1: यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो। वाह वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी है, मेरे पास रेडी ने इसको संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखा देते बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है। अब यहाँ क्या उसकी कीमत,
1: इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता है
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी और एक्टिंग भी कर लेते थे। ये वो मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये एनुअल इम्पोर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था। 29 टाइम्स क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था।
0: वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरिक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रिकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहले बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे, मुंबई आए, साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स मुंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: मुंबई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स ने उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में मुंबई आए,
0: तीन महीने
1: में वापस चले गए और वापस आर्मी में
0: हार के। और वो जो टोली ने उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो देव वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, आज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना, वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमीडिएटली। फिर उनकी शादी हो गई, तो
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है? वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का। बोला यार तू इधर क्या कर रहा है? तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ। तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है। तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी बुआ थी। शी वॉज, वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाबूजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था नंद।
1: हाँ, आनंद से नंद।
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस, ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई, बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत,
0: बहुत बड़ी बात है लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
0: नहीं नहीं, कुछ देखने वाला क्या, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देखने
1: सीधे शादी तय।
0: शादी तय, और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए, ये कमाल की बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
0: बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ,

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मां ही चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आपको जानकारी देंगे हमारी आज की सभा में शेष रही और कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको सुनाते हैं हमारी आज की सभा की शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पल में आप सुनेंगे ठीक 5:05 पर कार्यक्रम नारी लोक।

विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम के 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ी आप सुनेंगे आकाशवाणी के माही चैनल से शाम के 6:15 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 6:30 पर। राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर।

किसान श्रोता किसान वाणी कार्यक्रम सुनेंगी शाम के 7 बजे। जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगी शाम के 7:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। रात्रि के 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे से। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोता ये थे हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम।

आइए अब एक नजर डालते हैं हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी पातकालीन सभा की शुरुआत की तरह सुबह 5:55 पर

सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। चिंता में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से सुबह के 6:05 पर। वनला आप सुनेंगे 6:10 पर। रामचरस मनोधन आप सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 6:50 पर। वातन आप सुनेंगे 7:20 पर।

विविध भारती कार्यक्रम सुनेंगे सुबह के 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8 बजे। कार्यक्रम को दिन से आप सुनेंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर।

सुबह के 9 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी प्रादेशिक समाचार। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर। एनसीआर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 9:30 पर।

0: मेरे लिए कार्यक्रम सुनने वाली मेरी प्यारी सभी बहनों को आपकी बहन सीमा जैन का प्यार भरा नमस्कार। जुड़िए में जीवन का अनुभव, आंखों में सपनों का संसार। बुजुर्ग हमारे घर के शान है, इनसे ही है जीवन साकार। समय निकाले साथ निभाए, दो मीठे बोल सुनाए हम। सम्मान प्रेम और अपनापन देकर इनका हर पल महकाए हम। जी हाँ बहनों, आज की हमारी बातचीत का विषय बुजुर्गों से ही संबंधित है, तो आइए सुने आज की बातचीत आज की हमारी खास मेहमान के साथ। बहनों, आज के हमारे नारी लोक कार्यक्रम में हमारी मेहमान है एक गृहिणी विभा जैन। नमस्कार विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी लोक में।
1: नमस्कार सीमा जी।
0: विभा जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुजुर्गों के सम्मान का ख्याल रखें, तो इस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आज के समय में संयुक्त परिवार बहुत कम होते जा रहे हैं और अधिकतर एकल परिवार ही रहते हैं। तो ऐसे में जब संयुक्त परिवार में कुछ लोग रहते हैं या फिर जो एकल परिवार हैं, जब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से उन बुजुर्गों का ख्याल रखें।
1: सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जो परिवार और समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बुजुर्ग का अपने फैमिली का एक पिलर होता है, अपने परिवार की एक जड़ होती है। जैसे पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो वो पेड़ को बनाए रखती है, उसी तरह परिवार के बुजुर्ग जैसे हमारी संस्कृति है, संस्कार है, हमारी परंपरा है, उनको मजबूत बनाए रखते हैं। का जो अनुभव होता है वो हमें बहुत हेल्प करता है हमारे परिवार को चलाने में। उससे हम बहुत चीज सीख सकते हैं। समय के साथ उम्र बढ़ती है, उनका शरीर कमजोर होने लगता है, उनकी याददाश्त कम होने लगती है, पर फिर भी हमको उनकी भावनाओं का, उनके आत्मसम्मान का सम्मान करना चाहिए। उनका स्नेह हमारे लिए कभी कम नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने उलझ जाते हैं हमारे दिनचर्या में कि हम उनका ध्यान नहीं रख पाते। सिर्फ पूरे दिन का अगर हम सिर्फ 10 मिनट भी उनसे हंस के मुस्कुरा के बात कर लेते हैं तो उनका पूरा दिन खुशियों से भर जाता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ उनका पेड़ छूने से उनका हम सम्मान नहीं करते, उनके लिए हमको उनका आदर करना चाहिए, उनको हमारे निर्णयों में शामिल करना चाहिए, उनके अनुभवों को हमें महत्व देना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए, उनको ये महसूस कराना चाहिए कि वो आज भी हमारी फैमिली के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट थे जैसे पहले थे। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें चलना सिखाया था, आज वक्त आ गया कि हम उनका हाथ थामें। बच्चे हमारे घर में देखते हैं हम जैसे अपने माता पिता की, दादा दादी की, नाना नानी की सेवा करेंगे। जैसा एनवायरमेंट हमारे घर में होगा बच्चे वही सीखेंगे, यही चीज रोटेट होगी हमारे साथ, इसलिए हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। आजकल लोग ज्वाइंट फैमिली से सिंगल फैमिली में आ गए हैं, पर जब हमारे साथ वो रहते हैं तो हमको ये महसूस कराना है कि उनका आशीर्वाद आज भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीमा जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। समय समय पर उनको डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवाना, उनकी दवाइयों का, उनको खाना भी किस तरीके से चाहिए, पौष्टिक आहार देना, समय पर उनका इलाज करवाना, यह भी सब उनकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी, ये सब उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात की हम उनसे बातचीत करें। सीमा जी, हमको उनकी नापसंद पसंद का भी ध्यान रखना होता है। वो भी पूरा दिन घर में रहते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो कभी हम 10 मिनट शाम को उनको टहलने के ले जाए या उनको कभी कभी हमारे साथ घुमाने ले जाए तो उसको ऐसा एहसास होगा कि बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं। सीमा जी, कई बार बुजुर्गों की स्मरण शक्ति कम हो जाती है तो वो हर चीज को दो दो बार पूछते हैं, रिपीट करते हैं, तब हम धैर्य खो देते और उनपे झुंझला जाते। तब हमको थोड़ा सा संयम रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, उनकी बातों को धैर्य से सुनना होगा। सीमा जी,

0: बुजुर्गों की स्मरण शक्ति के लिए आजकल बहुत सारी ऐसी पहेलियां आती है, उनके पुराने अनुभव हम उनसे पूछे, उनका बचपन उनको याद दिलाए, तब उनको अच्छा एहसास होता है, उससे उनकी स्मरण शक्ति बनी रहती है, उससे उसका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, अकेलापन कम महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि परिवार में जब बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे उनको खिलौने मिल जाते हैं, तो दादा दादी से ज्यादा घुल मिलते हैं। माता पिता तो इतने व्यस्त रहते अपनी लाइफ में कि वो इतना टाइम नहीं दे पाते, बच्चे और दादा दादी का बुजुर्गों का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो बच्चे उनके साथ खेल सकते हो और बच्चे भी बहुत सेफ फील करते हैं। वो उनके बचपन की कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां पहेलियां बच्चों को सुनाते, बच्चे अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और आज की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कुछ कुछ ऐसे होती है जो हम उनको सिखा सकते, जो हम उनको बता सकते, जिससे उनका मन शांत रहेगा और वो अच्छा फील करेंगे। सीमा जी, मैं उनको खुश रखने के लिए आपको कुछ सुझाव बताऊंगी। जैसे किसी बुजुर्ग का पुराने शौक होते हैं उनके, उससे हम उनको वापस इंट्रोड्यूस करवाते, जैसे किसी का होता है संगीत से, तो हम उनको ऐसे संगीत सुनाए या उनको ऐसा आजकल पेन ड्राइव में और मोबाइल में उनको डाउनलोड करके दे दे, तो वो उसको सुन के उनका मन शांत रह सकता है। किसी को बागवानी का शौक होता है तो छत पे या किसी गार्डन में ले जाए, ऊपर छत पे ऐसा बना दे कि वो उसमें पूरा दिन अपना टाइम निकाल सके। किताबों का शौक होता है तो हम किताबें लाइब्रेरी से लाके उनको दे सकते हैं, जिससे वो नई नई किताबें पढ़ेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और सबसे मेन बात होती है उनके जो भूल गए पुराने दोस्त, तो सोशल मीडिया है और उसका एक ग्रुप बना दो, कहीं पे भी एक ग्रुप बना दो, तो उससे वो उनसे जुड़े हुए रहेंगे, उनसे बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे घर पे या कोई फंक्शन है या उनका कुछ बर्थडे है एनिवर्सरी, तब उनके सारे पुराने दोस्तों को घर पे बुलाए तो उनको एक अलग से कुछ अच्छा महसूस होगा कि बच्चे हमारा ख्याल रख रहे हैं या उनको हमारे आज भी हमारी फिक्र है, ऐसा उनको अंदर से महसूस होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भी बहुत कुछ किया है। जब हम छोटे थे तब उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो आज समय आ गया कि हमको उनका ध्यान रखना है।
1: विभा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारी बहनों को दी। चलते चलते आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: हमारी सभी बहनों को आज यही संदेश देंगे कि आज हम सभी बहनें मिलकर ये संकल्प ले कि अपने घर और समाज के हर बुजुर्ग का हम सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं का हम आदर करें, उनके अनुभवों से हम सीखें और उन्हें कभी ये अकेलापन महसूस नहीं होने दें। यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होगा आज के दिन का। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि स्वयं निवास करती है। हम पर हमेशा बुजुर्गों का आशीर्वाद रहना ही चाहिए।
1: धन्यवाद विभा जी, आपने बहुत ही सुंदर संदेश हमारी बहनों को दिया। आशा है हमारी बहनें इस संदेश को समझेंगी और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। विभा जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों, इस महत्वपूर्ण बातचीत के बाद अब समय है गीत संगीत का, तो सुनते हैं एक सुंदर सा गीत।
3: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

कहते हैं कि फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुक जाता है, अर्थात जब एक व्यक्ति को बहुत सी उपलब्धियां मिल जाती हैं या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर लेता है तो वह और अधिक विनम्र हो जाता है, या फिर उसे और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि सफलता के बाद मिली यह विनम्रता यही हमारी व्यक्तित्व की पहचान बनती है। इसलिए बहनों, अपनी सफलता पर घमंड न करें, क्योंकि यह घमंड हमें दूसरों से दूर ले जाता है और एक ऐसा समय भी आ जाता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं। बहनों, जब हमारे मन में घमंड आ जाता है तब हम दूसरों की बात न सुनकर खुद को ही अहमियत देने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी इस सफलता में बहुत से लोगों का साथ होता है। ये सफलता भी कभी स्थायी नहीं होती बहनों, एक सफलता के बाद फिर नए लक्ष्य बन जाते हैं और हमें फिर से प्रयास करना होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस सफलता को पाने में हमारे परिवार, हमारे साथ काम करने वाले लोगों और हमारे शुभ चिंतकों का साथ रहा है। इसलिए बहनों, उन्हें धन्यवाद कहें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें और सभी के प्रति विनम्र बने रहें। बहनों, सफलता मिलने के बाद जब व्यक्ति एक एक कदम और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता है तब और अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन घमंड आ जाने पर यह प्रगति रुक जाती है, क्योंकि व्यक्ति मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, वह सब जानता है और उसे अब कुछ जानने समझने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में वह दूसरों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है या दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है, दूसरों से रूखा व्यवहार करने लगता है, कुछ नया सीखने या जानने की कोशिश ही नहीं करता और समय बीतने के साथ ही वह पिछड़ने लग जाता है, क्योंकि सीखना, लक्ष्य बनाना और सफलता प्राप्त करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती ही नहीं है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र बने, दूसरों का सम्मान करें, सरल बने, दूसरों की भी सुने और उनकी भावनाओं को महत्व दें, अपनी बोलचाल में मिठास बनाए रखें, संवेदनशील बने और भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि समय और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अपनी सफलता और उपलब्धियों का उपयोग परिवार और समाज के विकास में करें और जैसा कि किसी कवि ने कहा है, आओ मिलकर संकल्प करें, रहेंगे सदा सरल और महान, सफलता मिले तो बांटे खुशियां, यही है जीवन का सच्चा मान। बातें अभी और भी हैं बहनों, लेकिन समय है एक छोटे से ब्रेक का, तो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

वहीं बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में हवा में नमी होना एक सामान्य बात है। इस नमी के साथ ही एक बहुत

की समस्या आती है फफूंद लगने की। दीवारों पर, अलमारियों के कोनों में, कपड़ों पर, बाथरूम में और अन्य सभी जगहों पर जहां कहीं गर्मी और नमी रहती है वहीं फफूंद लग जाती है। हम इस फफूंद से बचाव कैसे करें बहनों, आइए इस बारे में बात करें। सबसे पहला बचाव का तरीका है बहनों कि बारिश का मौसम आने से पहले ही फफूंद से बचाव की तैयारी कर लें। जहां जहां भी नमी आने की संभावना हो वहां सफाई करें और फिनाइल या कपूर की गोलियां रख दें। विशेष रूप से अलमारियों को खाली करके उसके सभी शेल्फ्स में, कोनों में ये गोलियां रख दें और समय समय पर इन कोनों को देखते रहें और सफाई करते रहें। घर में जहां जहां भी पानी का लीकेज या रिसाव होता हो उसे पहले से ही ठीक करवा लें। घर की दीवारों में कोई दरार आदि हो तो उसकी भी मरम्मत करवा लें। इसके अलावा बहनों, घर से बाहर बाथरूम और टॉयलेट में पानी की निकासी और सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये सभी जगह जहां तक हो सके सूखी रखें। खिड़की दरवाजों के भी नियमित साफ सफाई करते रहें जिससे कि उन पर धूल और नमी न जमने पाए। बहनों, बारिश के मौसम में वेंटिलेशन का ध्यान जरूर रखें। खिड़की दरवाजे खुले रखें जिससे कि हवा का प्रवाह बना रहे और नमी कम से कम हो। बहनों, आजकल मौसम में नमी बढ़ने के साथ ही चिपचिपाहट बढ़ने लगती है और हम हर समय एसी में बैठे रहना चाहते हैं जिससे चिपचिपाहट भरी गर्मी से छुटकारा मिल सके। ऐसे में खिड़की दरवाजे हर समय बंद रहते हैं, लेकिन वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए सुबह और शाम के समय खिड़की दरवाजे जरूर खुले रखें। इन खिड़की दरवाजों की, मच्छर जालियों की भी नियमित सफाई करें जिससे इनमें जमी धूल में नमी ना चिपके और हवा पास होती रहे। साथ ही एयर कंडीशनर के यूनिट और फिल्टर की भी साफ सफाई का ध्यान रखें, अन्यथा फिल्टर धूल के कणों को वापस हवा में फैलाकर समस्या पैदा कर सकता है। बहनों, रसोई में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें जिससे नमी और भाप बाहर निकल जाए। अनाज और अन्य दूसरी खाने पीने की चीजों को फफूंद से बचाने के लिए एयरटाइट कंटेनर या फ्रिज आदि में रखें और फ्रिज को भी समय समय पर साफ करते रहें। अनावश्यक खाने पीने का सामान स्टोर करके न रखें। फर्नीचर को फफूंद से बचाने के लिए नियमित सफाई के साथ ही उन्हें दीवार से थोड़ा दूर रखें। किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ सूखे कपड़े पहने, हल्के हवादार और सूती कपड़े पहने, गीले नमी युक्त या पसीने में भीगे कपड़े ना पहने, कपड़े को धूप निकलने पर धूप में सुखाएं। इस तरह बहनों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप फफूंद से बचकर स्वस्थ बने रह सकते हैं। और बहनों, अब समय हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो आज्ञा दीजिए आपकी बहन सीमा जैन को। नमस्कार।

अभिनारी लोक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 103.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं विविध भारती का कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के गाए गीत से। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार वर्मा मलिक, फिल्म का नाम नागिन।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया बेरंग पिया है महासटैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
0: आज के मेहमान
1: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा गीत, आवाज चित्रा सिंह की, फिल्म का नाम तुम बिन।

अभी आपने तुम बिन इस फिल्म का गीत सुना, आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना।

0: मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने
1: दिल तेरा दीवाना। अभी आपने इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को सुना। बार बार देखो ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीतकार प्रतीक, संगीतकार जसलीन रॉयल और गीत भी इन दोनों ने ही गाया, यानी प्रतीक और जसलीन रॉयल ने।

तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। ये विविध भारती है, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे

0: बहाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी जेएएसी ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर जेएएसी ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पीओजेके में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के एचएस प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तरारी नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवा रहे हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। स्वर दे रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिल्म का नाम दूसरा आदमी।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया।
3: लीजिए सुनिए लकी फिल्म में अदनान सामी और लता मंगेशकर को। अदनान सामी ने ही इस गीत को गाया है और संगीत भी तैयार किया है, बोल हैं समीर के।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियां।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर लिख लें ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है
2: 9414066730। दोस्तों मैं एक बार नंबर फिर से दोहराना चाहूंगी 9414066730।
1: श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एडिक्शन पर। जी हाँ, जिसे हम नशा भी कहते हैं।
3: मुझे पीने का शौक।
1: जी हाँ श्रोताओं, कभी शौक के नाम पर तो कभी दोस्ती की आड़ में, कभी दुनिया

कि दुखों का बहाना करके तो कभी कोई मजबूरी बताकर, कभी टेंशन तो कभी बोरियत दूर करने के लिए लोग शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। लेकिन नशा कब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नशा ऐसी बीमारी है जो हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को तेजी से निगलती जा रही है। युवा पीढ़ी के लिए कोई सबसे खतरनाक बीमारी है तो वो है नशे के जाल में फंसना। जी हाँ श्रोताओं, इस विषय पर मुझे एक अमीर आदमी की कहानी याद आती है जो अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत ज्यादा परेशान था, और जब भी वो अपने बेटे से बुरी आदतों को छोड़ने की बात करता तो उसे बस एक ही जवाब मिलता, अरे पापा अभी तो मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। और वो अमीर आदमी का बेटा कभी भी उस बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो ऐसा हुआ, उन्हीं दिनों एक महात्मा जी गांव में पधारे हुए थे। जब उस अमीर आदमी को उनके खयाती के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगली सुबह पिता और पुत्र दोनों बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी ने बेटे से बोला, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, बेटे क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? बेटे ने कहा, जी हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में कितना मजा आ रहा हो, वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी पर काफी प्रयत्न के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने गुलर के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और इसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ तस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत पेड़ है, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है गुरुजी। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसे ही बुरी आदतों के साथ भी होता है, जब वे नहीं होती हैं तो उन्हें उखाड़ना आसान होता है, पर वे जैसी जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन आज से ही बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसा ही हाल है हमारे युवाओं का। कुछ लोग शराब पीने के पक्ष में ये तर्क देते हैं कि अरे दो पैक पीने के लिए तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं, लेकिन दोस्तों कितने लोग हैं जो काफी समय बाद भी दो पैक पीने पर ही सीमित रहते हैं। हकीकत तो ये है कि कब दो पैक चार पैक में, चार पैक क्वार्टर में और क्वार्टर बोतल में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे लोग शराब का सेवन कई प्रकार से करते हैं, कुछ लोग नियंत्रित मात्रा में उचित तरीके से पीते हैं और इनके शराब पीने से किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शराब जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। शराब पर उनका नियंत्रण नहीं होता बल्कि शराब का उनकी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होता है। इनकी जिंदगी में शराब ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु बन जाती है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक पारिवारिक, शारीरिक तथा मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब नहीं छोड़ पाता है। यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कमबख्त पीता है मजा लेने के लिए, हम तो पीते हैं क्योंकि पीनी पड़ती है। शराब पीने की आदत के कारण शर्मिंदगी महसूस करना, शराब के विषय में दूसरे लोगों के द्वारा टोके जाने पर गुस्सा होना, या सुबह की शुरुआत शराब के साथ करना, और कई बार ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति रात के हैंगओवर को दूर करने के लिए बिना कुल्ला मंजन किए ही शराब पीना शुरू कर देता है,
और श्रोताओं ये अत्यंत ही घातक

स्थिति है। श्रोताओं, नशे की लत ने बसे बसाए कई परिवारों को उजाड़ दिया। माना भी जाता है कि एक बार जो नशे की गिरफ्त में फंस गया उसका बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि लगभग 100 से 80 लोग नशा छोड़ने के बाद दोबारा इसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो तो उसके सामने कोई भी नशा नहीं टिकता। श्रोताओं, ऐसे ही कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी बताती है जो नशे के शिकंजे में फंस गए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया नशे को ठोकर मार कर आगे बढ़े और खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत की। जी हाँ श्रोताओं, चंडीगढ़ के जितेंद्र सिंह साल 2002 में 12वीं के छात्र थे। इस दौरान दोस्तों की संगति में आकर पहली बार सिगरेट का कश लगाया और फिर धीरे धीरे नशे के दलदल में फंसते चले गए। हेरोइन, चरस तक का नशा आम लगने लगा। शुरुआत के दिनों में दोस्तों ने अपने पैसों से नशा खरीद कर दिया। कुछ दिनों में जब वो नशे के शिकंजे में बुरी तरह से फंस गए तो अपनी ही लत को पूरी करने के लिए घर में चोरियां करने लगे। हर जगह उन्हें दुत्कार व घर में पिटाई तक होने लगी, लेकिन परिजनों ने यह सोचकर शादी करवा दी कि शायद उनका बेटा सही राह में चल पड़े। श्रोताओं, लेकिन यह कोशिश भी बेकार गई। जितेंद्र का एक बेटा हुआ, वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी के 18 साल बर्बाद करने के बाद एक दिन उनके बेटे ने कहा कि पापा प्लीज नशा करना छोड़ दो। मासूम बेटे की आवाज ने जितेंद्र को अंदर तक झकझोर दिया और उसके बाद वो अपनी ही इच्छा से बरवाला के एक नशा केंद्र में पहुंचे और इलाज कराया। जब सब ठीक हो गया तो नौकरी की तलाश शुरू की और अब वे चंडीगढ़ स्थित एक सरकारी विभाग में आईटी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। शुदा ऐसा ही कुछ हाल सेक्टर 41 में रहने वाले विजय ने बताया कि साल 2013 को उनकी मुलाकात चंडीगढ़ के डिस्को में एक शख्स से हुई। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और उसकी संगति में आकर वो नशे के आदि हो गए। नशे के चक्रव्यूह में फंसकर वे हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम का नशा करने लगे। अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्हें रोज कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। शुरुआत में पैसे आसानी से मिल जाते थे, लेकिन जब घर वालों को पता चला कि पैसों को वो नशे में उड़ा रहे हैं तो परिजनों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब भाई घर में रोजाना लड़ाई होने लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि विजय के पिता ने उनको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकल कर भी वह अपना शौक पूरा कर रहे थे, मगर जब एक दिन बाहर से भी कुछ नहीं मिला तो अपनी घर की याद आई। जी हाँ, किसी ने नशा केंद्र के बारे में बताया तो खुद ही सेक्टर 18 के नशा केंद्र में भर्ती हो गए। करीब 3 महीने के इलाज के बाद नशा छूट गया। तो श्रोताओं, माता पिता तो माता पिता होते हैं। विजय के पिता ने अपना बिजनेस दोबारा संभालने के लिए विजय को दे दिया। विजय की नई पारी अब खुशियों से भरी है। ऐसे ही नया गांव के रहने वाले 32 वर्षीय शुभम बताते हैं कि वो साल 2009 से चोरी छिपे, जी हाँ चोरी छिपे नशीले कैप्सूल का सेवन करते थे। इस कैप्सूल ने उन्हें अपना इतना आदी बना दिया था कि घर में चोरी करना उनके लिए जैसे आम बात हो गई थी। वो शहर के एक इलाके में नशीली गोली खरीदकर दिन में 2 से 3 बार सेवन करते थे। नशे की वजह से वो दिन भर घर में सोते रहते थे। ये देख एक दिन परिवार वालों को शक हो गया। उन्होंने जांच की तो पता चला कि वो नशे की गोलियां खाते हैं। तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले जबरदस्ती उन्हें पीजीआई नशा मुक्ति केंद्र ले गए और उनका इलाज कराया। श्रोताओ, करीब 3 महीने के इलाज के बाद सेहत में काफी सुधार आ गया। शुभम के रिश्तेदारों ने बताया कि अब वो किसी बिल्डर के साथ मिलकर अच्छी खासी नौकरी कर वो अपना परिवार चला रहे हैं। तो श्रोताओ, अगर जितेंद्र, विजय, शुभम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जी हाँ श्रोताओ, अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मित्रों, आज वक्त है और वक्त रहते ही विचार करें कि आपके लिए, आपका परिवार, बच्चे, करियर और स्वास्थ्य, आपके नशा करने से इन चीजों पर कितना असर हो रहा है। थोड़ा रुक कर बैठ कर गंभीरता से विचार करें। शराब छोड़ने का पक्का निश्चय करें।
उन परिस्थितियों एवं ऐसे दोस्तों की संगति से बचे रहें जो शराब सेवन को बढ़ावा देते।

0: शराब की खाली बोतलें, केन आदि घर से बाहर फेंके। जब ड्रिंक करने की संभावना लगे तो समय पहले ही खाना खा लें या फिर पानी एवं तरल पदार्थों का भरपूर मात्रा से सेवन करें। हेल्दी खाना एवं जीवन शैली को अपनाएं। अपने रूटीन को बदलें। यदि काम खत्म करने के बाद शाम को शराब पीने की आदत है तो काम खत्म करने के बाद माता पिता, भाइयों एवं ऐसे लोगों से मिलने जाए जहां शराब पीकर नहीं जा सकते, या हो सके तो अपने इष्ट के दर्शन करने या धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। श्रोताओं, हार न माने। यदि इतने उपाय करने के बाद भी नशा छोड़ने में आप सफल न हो तो विशेषज्ञ एवं नशा मुक्ति केंद्र से राय लेने में देर न करें। श्रोताओं, शराब, धूम्रपान, तंबाकू ये सब सेहत के दुश्मन हैं। किसी भी स्थिति में नशे की लत से बचें। यदि आप नशे से बचे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि कोई नशा करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके नशे से दूरी बना ले, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक साथ कई परिवारों को बर्बाद कर देती है तथा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के नाश का कारण बनती है। इसलिए नशे से बचना ही बेहतर उपाय है। और श्रोताओं, ईश्वर ने हमारे लिए सारी चीजें उचित बनाई है, परंतु सारी वस्तुएं मनुष्य के लाभ की नहीं है और हम किसी बात के अधीन नहीं है। पर ये शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर इसमें वास करते हैं, तो आइए इस मन के मंदिर को, जो कि हमारा शरीर है, इज्जत करें और इसे बर्बाद होने से बचाएं। तो श्रोताओं, बहुत से श्रोता हैं जो कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने विचार, सुझाव, यहाँ तक कि क्या परिवर्तन उनकी जिंदगी में आया है, उसे हमसे साझा करते हैं और हम सच में धन्यवादित हैं, क्योंकि आपके विचार, आपके सुझाव ही हमें अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे श्रोताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सूरज कुमार पालीगंज पटना से, सावित्री कुमारी समस्तीपुर बिहार से, अवधेश सीतामढ़ी बिहार से, कमल सीतापुर से, दुर्गा प्रसाद गोंडा यूपी से, छोटू कुमार मुजफ्फरपुर से, अब्दुल्ला महाराजगंज बिहार से, शत्रुघ्न लाल बाराबंकी यूपी से, राधेश्याम हरदोई यूपी से, ज्योति हरदोई, मथुरा पासवान झारखंड से, राम नरेश शर्मा सीतामढ़ी बिहार से, आर्यन सिंह रामपुर यूपी से, सुरेंद्र सिंह बाराबंकी यूपी से, नवल किशोर जी सीतापुर यूपी से और नरेश चंद्र यादव अरावल बिहार से। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब हमें बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और अगर आप नशे से संबंधित अपने एक्सपीरियंसेस या अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं को हमसे बांटना चाहते हैं ताकि रेडियो के माध्यम से दूसरों की जिंदगी बदल सके, या फिर आप भी कहानियां या कविताएं लिखने का शौक रखते हैं, तो हमें जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम में आपके नाम के साथ हम उसे साझा करेंगे। तो श्रोताओं, हमें अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें, या आप मिस कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9414066730। दोस्तों, मैं एक बार नंबर फिर से दोहराना चाहूंगी, 9414066730।
1: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001।
0: अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें और हाँ, नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियां। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल FM बैंड 101.3 MHz पर। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और फिर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार।
3: दूसरे दिन भी बाधित रही। राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम शुरू किया, और प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री

0: किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और हमेशा दी जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी आज विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं हो पाई। विभिन्न मुद्दों पर हुए शोर शराबे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित हुई। इसके बाद इसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। नीट परीक्षा पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों के कारण लोकसभा में गतिरोध बना रहा। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली और छात्रों के मुद्दों को लेकर हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दों पर बात करना चाहता है। उन्होंने संसद में विद्यार्थियों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित उच्च अधिकार समिति ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित मामलों पर जनता से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। समिति ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के हितधारकों और पर्यावरण विदों और संरक्षणवादियों तथा स्थानीय समुदायों से जिनकी आजीविका और कल्याण इस क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं उनसे 31 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित अभियान है। इसमें युवाओं का पंजीकरण, प्रशिक्षण और विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव एकीकृत प्रणाली के माध्यम से होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही खेल, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग की पायलट परियोजना की शुरुआत बगरू विधानसभा क्षेत्र से की गई है। इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास से इसका शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि देश की प्रगति के लिए युवा शक्ति का सकारात्मक होकर सही दिशा में बढ़ना आवश्यक है।
2: ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, खेल के लिए, कौशल विकास के लिए और सुशासन से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के माध्यम से लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। युवाओं का धैर्य, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत, वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। जब युवा शक्ति सही दिशा में सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है।
0: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी इस मौके पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को अब राज्य के बाहर भी निशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से लागू की गई आउटबाउंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था से देश के विभिन्न राज्यों में पात्र लाभार्थी 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज ले सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि 6 महीने में प्रदेश के 30,000 से ज्यादा लोगों ने अब अन्य राज्यों के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवाया है। सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ये योजना लागू की थी। इसके बाद पात्र परिवार देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अस्पतालों में उपचार का लाभ ले सकते हैं। गौरतलब है कि देश भर के 16,000 से अधिक

सरकारी और 14,000 से अधिक निजी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। जयपुर में आज जेडीए मुख्यालय में परियोजना कार्य समिति पीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था में सुधार करने और जल निकासी तथा हरित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लगभग 219 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें विद्याधर नगर के पास स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क, रामनिवास बाग क्षेत्र में रॉयल हैप्पीनेस पार्क और राजस्थान उत्सव पार्क के लिए भी मंजूरी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में करीब 2 सप्ताह के अंतराल के बाद मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात का दौर चला। सीकर में देर रात शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। सीकर ग्रामीण में 11 सेंटीमीटर से अधिक पानी बरसा। उधर झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में जारी बरसात के कारण परवन नदी उफान पर आ गई है। 12 जिले में भी आज करीब 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। भरतपुर में भी सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर बना हुआ है। कोटा जिले में भी मौसम का मिजाज बदला और ग्रामीण अंचल झमाझम बारिश से तरबतर हो गए। झुंझुनू, चूरू, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन में भी मॉनसून सक्रिय है। बारिश होने से लोगों को उमस और तपन से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 33 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। मॉनसून की रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के प्रमुख बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। बीसलपुर बांध अपनी क्षमता का लगभग 66% से ज्यादा भर चुका है। वहीं राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राज्य में जागरूकता शिविर लगाए जाने पर जोर दिया है। श्री देवनानी ने से भारतीय स्टेट बैंक के जयपुर सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक ओमकारनाथ चौधरी ने आज भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कानूनी साक्षरता और नशा मुक्ति जागरूकता शिविर लगाए गए। इसी कड़ी में ब्यावर के विभिन्न स्कूलों में नशा मुक्ति और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। भरतपुर में भी न्यायिक अधिकारियों की ओर से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए से नो टू ड्रग्स मुहिम चलाई गई। उधर हनुमानगढ़ में भी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। टोंक जिले के मालपुरा में 4 व्यावसायिक फर्मों पर राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने तलाश और जब्ती की कार्रवाई की, जिसमें करोड़ों रुपयों की फर्जी बिलिंग के जरिए कर चोरी किए जाने के संकेत मिले हैं। ये कारोबारी तिलहन, खाद्य तेल और चीनी के व्यवसाय से जुड़े हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये चारों फर्में एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी। जब्त किए गए दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में डिग्गी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों भाई खेत में पाइप ठीक करने गए थे। इस दौरान एक युवक फिसलकर पानी के डिग्गी में गिर गया। दूसरा भाई उसे बचाने के लिए डिग्गी में कूदा, किंतु पानी गहरा होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद गोताखोरों की मदद से उनके शव बाहर निकाले गए। डीग जिले के सरकारी स्कूलों में इको क्लब बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सतत विकास लक्ष्यों और केंद्र सरकार के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन के तहत ये पहल की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि इन इको क्लबों के माध्यम से साल भर वर्षा जल संग्रहण, वन महोत्सव और पौधरोपण की गतिविधियां होंगी। इनके जरिए बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये परीक्षा 26 और 27 जुलाई को 2 पारियों

0: होगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में भी जिला स्तरीय परीक्षा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 28 जून को हुई वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कहा, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही। राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम शुरू किया। और प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे सिरोही जिले में पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। जिले में प्रशासनिक स्तर पर कई आयोजन हुए जिसमें लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। वहीं धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से भी जिले में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। इस बीच माउंट आबू का सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर पिछले दिनों संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित भी करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा। चिंतन शिविर में देशभर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जन सुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले पिछले दिनों सिरोही जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि MSME सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में विशेष उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आबूराज में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि अरावली की गोद में बसा आबूराज आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है और योग के लिए सर्वोत्तम स्थलों में से एक है। इस अवसर पर हजारों लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आम जन की सरकारी समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। आज से शिविरों के फॉलोअप कैंप भी शुरू हुए हैं। जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर ने पिंडवाड़ा में आयोजित सुगम्य सिरोही अभियान के प्रमाणीकरण शिविर का पिछले दिनों निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के दूसरे चरण में शिवगंज, आबू रोड और सिरोही में भी दिव्यांग जन प्रमाणीकरण शिविर आयोजित किए जाने हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने पिंडवाड़ा क्षेत्र के घरठ, मालेरा, जल जीवन मिशन, पंचायत भवन, नर्सरी, मोरस बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों मौसम

0: संभावना बना हुआ है। कभी हल्की बारिश तो कभी घने बादल और कभी धुंध से ढकी अरावली की पहाड़ियां पर्यटकों का मन मोह रही है। नक्की झील, कुरु शिखर, सनसेट पॉइंट, टॉड रॉक, पीस पार्क और प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। छुट्टियों के दिनों में होटल, रेस्तरां और स्थानीय बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को फायदा हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिरोही जिले में पिछले दिनों उल्लेखनीय कार्य हुआ। हरियालो राजस्थान अभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले भर में हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत रामपुरा के पीपल की चारागाह में आयोजित जिलास्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पिछले दिनों शिवगंज शहर को बड़ी सौगात मिली। अमृत योजना 2.0 के तहत लगभग 31 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से शहरी जल योजना के संवर्धन और पुनरुद्धार कार्य का भूमि पूजन किया गया। नई जल टंकी सहित कई कार्यों से शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक होवानु रोकण सारू सगळो मिलर कोशिश करण बाबत कह्यो। सरकार रो दोषियां रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रो संकल्प दोहरायो। संसद रा दोन्यो सदना माए विपखरा सदस्यां रा हंगामा रे कारण आज दूजा दिन ही कामकाज नहीं भे सक्यो। राज्य सरकार नौजवाना ने और मजबूत बनावन सारू मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो। और प्रदेश माए चौमासारी बिरखा ओजू शुरू हुई, कई थोड़ा में बस्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवता भगत माए वेवन वाली परीक्षा वाला पेपर लीक वेवन रोकण सारू सगली संबंधित पार्टियां मिलर कोशिश करण बाबत कहो है। आज संसद भवन माए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए रा संसदीय दल री हर सप्ताह वेवन वाली रणनीति मीटिंग पाछे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी। वह बतायो कि प्रधानमंत्री परीक्षा वाला पेपर लीक करण वाला रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण सागे देश रा नौजवाना रा भला रो संकल्प दोहरायो। रिजिजू कह्यो कि लाला दिनाभिया नीट पेपर लीक मामला रा सगला आरोपिता ने गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी जेल में बंद है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब करके करें।
1: श्री रिजिजू कहो कि प्रधानमंत्री मोदी न्यारा न्यारा देशों सागे करी जिया मुक्त व्यापार समझौता रा बारा माई जानकारी दीनी। वह कहो कि किसानों रा भला माथा खास ध्यान दियो चियो है और हमेशा दियो चावेला। संसद रा पावस सत्र रा दूजा दिन आज ही विपखरा सदस्यों का नियुक्त करी जे हंगामा रे कारण दोनों सदनों री कार्रवाई नहीं चल सकी। शोर शराबा रे कारण दोनों सदनों री कार्रवाई पहले तीन तीन दफा और पछे आखा दिन सारू टालती रिची। नीट परीक्षा पेपर लीक समेत न्यारा न्यारा मुद्दा रे कारण लोकसभा री कार्रवाई माए लगातार अड़चन आई, जबकि राज्यसभा माए विपखरा सदस्य परीक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों जुड़िया मुद्दा माथे हंगामो कीनो। लोकसभा माए विपखरा नेता राहुल गांधी आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुलाकात कर विपक्ष कानी विद्यार्थियों रा मुद्दा माथे बातचीत री मंशा जताई। वह संसद में विद्यार्थियों का मुद्दा माथा विगतवार चर्चा की मांग की। ये पाछे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया के जरिए कहो कि सरकार नीट और वांग जुड़िया आंदोलन रे बारा में संसद में चर्चा सारू तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का न्यू बनाई जी समिति अरावली री डूंगरिया

0: खिलाड़ियों जुड़िया मामला माथा जनता री राय मांगी है। समिति राजस्थान हरियाणा गुजरात और दिल्ली रा इनु जुड़िया एड़ा लोगा पर्यावरण विदा इनने बचावन वाला और स्थानीय समुदाय राय मांगी है जाने काम कमाई और भलो इनु जुड़ियो है। समिति ने 31 अगस्त ताई राय दी जा सके है। राज्य सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म माथे आधारित मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो है। इन तहत नौजवाना रा नाम नवन सिखावन और न्यारी न्यारी योजनाओं जुड़ाओ एकीकृत प्रणाली रे जरिए भ सकेला। इनो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौकाओं जोड़ खुद रे पान उबा करनो है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग री पायलट परियोजना री शुरुआत जयपुर के बगरू विधानसभा हलकाओं करी जी है जिन्होंने आगे पूरा राज्य में बधाई जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज माना रहवास इन री शुरुआत कीनी। इस मौके वह नौजवाना सागे बातचीत कीनी।
1: ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए खेल के लिए कौशल विकास के लिए और सुशासन से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के माध्यम से लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। युवाओं का धैर्य आत्मविश्वास अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। जब युवा शक्ति सही दिशा में सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है।
0: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल मौके मौजूद हा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना रा तहत प्रदेश रा पात्र परिवार ने अब दूजा राज्य में आई मुफ्त इलाज मिल रियो है। राज्य सरकार री ओर चलाई जी आउटबाउंड इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्थाओं पात्र लोग देश रा न्यारा न्यारा राज्य में आए 25 लाख रुपया ताई रो कैशलेस इलाज ले सके है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो के 6 महीना माए प्रदेश रा 30,000 बत्ता लोग दूजा राज्यों रा अस्पताल माए मुफ्त इलाज करायो है। सरकार लारला साल 15 दिसंबर ने आ योजना चलाई ही। ये पाछे हुई पात्र परिवार देश रा दूजा राज्यों माए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जुड़िया अस्पताल माए इलाज करा सके है। देश रा 16,000 बत्ता सरकारी और 14,000 बत्ता गैर सरकारी अस्पताल माए सुबी तो मुहैया कराई चियो है। जयपुर रा जेडीए मुख्यालय माए आज परियोजना कार्य समिति पीडब्ल्यूसी री मीटिंग रखी जी। इन माए शहर रा बुनियादी ढांचा न मजबूत बनावन आवन जावन री व्यवस्था माए सुधार करण पानी री निकासी हरित विकास और जनता रा सुबिता माए बढ़ोतरी जुड़िया प्रस्ताव माथा चर्चा करी जी। जेडीए रा आयुक्त सिद्धार्थ महाजन री सदारत माए भी ई मीटिंग माए करीब 219 करोड़ रुपया रा खर्च वाली विकास री कई परियोजनावां ने मंजूरी दी री जी। इन दौरान विद्याधर नगर कने स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क रामनिवास बाग हल्का माए रॉयल हैप्पीनेस पार्क और राजस्थान उत्सव पार्क सारोई मंजूरी दी री जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में करीब 2 सप्ताह पाछे चौमासारी बिरखा उजू भेवन लगी है। लाडला 24 घंटा माए कई ठोड़ा बरसात हुई। सीकर माए मोड़ी रात सरूफियो बरसात रो सिलसिलो आज सवारे ताई चालतो रहो। सीकर जिला रा गांव आई हलका माए 11 सेंटीमीटर उम्बत्तो पानी बरसियो। झालावाड़ जिला रा मनोहर थाना माए भी बरसात परवन नदी उफणवा लगी है। 12 जिला माई आज करीब 1.5 घंटा ताई जोरदार मे बरसियो। भरतपुर माई सवारे हुई बिरखा फैल रही है। कोटा जिला रा गांव आई हलका माई झमाझम बारिश हुई। झुंझुनू चूरू कोटपुतली बहरोड और डीडवाना कुचामन हुई बिरखा वेवन रा समाचार मिलिया है। मौसम विभाग आज 33 जिला माई बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। चौमासारी बिरखा ओजू जोर पकड़वाऊ राज्य रा खास खास बंधा माए पानी आवन लाग्यो है। बीसलपुर बंधो बूतारो 66% उम्बत्तो भर गयो है जबकि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बंधा माए पानी रो लेवल लगातार बध रियो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बधता साइबर अपराधा न ध्यान राखता थका जागरूकता शिविर लगावन माथे जोर तीनो है। वे आज भारतीय

0: स्टेट बैंक रा जयपुर सर्कल रा मुख्य महाप्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी सागे बातचीत रे दौरान आ बात कही। वे कहो कई सारू मोटा पैमाना माथा जागरूकता अभियान चलावनो जरूरी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में कानूनी साक्षरता और नशा मुक्ति जागरूकता शिविर लगाई चिया। ब्यावर री नेरी नेरी स्कूल में विद्यार्थियों ने नशीली चीजा काम लेवन उभिवन वाला नुकसान रे बारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर जानकारी दी रही जी। विद्यार्थियों ने नशो नीकरण और स्वस्थ जीवन शैली अपनावन रो संदेश दियो चियो। भरतपुर माई न्यायिक अहलकारा की ओर न्यारी न्यारी स्कूल माई नो टू ड्रग्स मुहिम चलाई ची। जयपुर नगर निगम की ओर कुत्ता और बिल्लिया ने टीका लगावन रो खास अभियान चलाई चियो है। निगम रा आयुक्त ओम कसेरा बतायो कहीं सा गई पालतू कुत्ता ना रजिस्ट्रेशन रो काम शुरू करने बाबत जयपुर माई शिविर लगाया चावेला। वे बतायो का ऑनलाइन तरीका हुई घर बैठिया कुत्ता रो पंजीकरण करायो जा सकेला। टोंक जिला रा मालपुरा माए राज्य कर विभाग री प्रवर्तन शाखा तिलहन खाद्य तेल और शक्कर रा कारोबार जुड़ी चार फर्मा मथ तलाशी और जब्ती री कार्रवाई कीनी। इन दौरान करोड़ा रूपये रा फर्जी बिल लगार टैक्स चोरी करण री ठापड़ी जब्त करी जा कागजात री जांच करी जा रही है। श्री गंगानगर जिला रा राय सिंह नगर हल्का माए डिग्गी माए डूब जावन रे कारण दो जना री मौत वे की। एक ही परिवार रा दोनों जना खेत माए पाइप ठीक करण किया हा जमायो एक जनो रपट और पानी रे डिग्गी माए पड़ गयो। वाने बचावन सारू दूजो जनो डिग्गी माए कूदियो पर पानी गहरो वे वणो दोनों जना डूब गया और मारी मौत वे की। हादसा पाछे गोताखोरा ने मदद दोनों लाशा बाहर निकाली ची। डीग जिलारी सरकारी स्कूल माए इको क्लब बनाया चावेला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा लगातार विकास रा लक्ष्य और केंद्र सरकार रा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन रा तहत आशीर्वाद करी ची है। जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह बतायो के आ इको क्लब माने जरिए आखा साल बिखारो पानी भेड़ो करण वन महोत्सव और पौधारोपण रा काम करिया चावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानून 26 और 27 जुलाई ने दो दो पारियां माए ली जावन वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2025 री जरूरी तैयारियां पूरी कर ली रही है। परीक्षा सारू जिला स्तर माथे कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। ये विचार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओर 28 जून ने कराई जी वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा री प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करती रही है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवणु रोकण सारू सगड़ाऊ मिलर कोशिश करण बाबत कहो। सरकार रो दोषियां रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रो संकल्प दोहरायो। संसद रा दोनों सदना माए विपक्ष रा सदस्या रा हंगामा रे कारण आज दूजा दिन ही कामकाज नहीं हो सक्यो। राज्य सरकार नौजवानों ने और मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो। हर प्रदेश में चौमासारी बिरखा ओजू स्वरूप ही कई थोड़ा मौसम में बरसियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थानी प्रादेशिक समाचार एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल है। इस समय शाम के 7 बजे प्रस्तुत है किसान वाणी कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम हमारा वारा हमरे किसान भाइयों ने किसान बनाने सोराड़ी वीणा बेन नो राम राम राम राम। देखो किसान भाई, आप जो किसान भाई नो कार्यक्रम है तो किसान भाई सोरा माते आवी पड़ा है, पर आज हमरे किसान भाई ने चेहरा माते जरा मुस्कान ने हंसी दिखाई रही थी की है। ये भाई केम दिखाई रही थी की तो सब किसान भाई जानी रहता है, क्योंकि आज जरा पानी ने

0: कृषि जी भी वैज्ञानिक है, कृषि विभाग वाला जी भी भाई, तो भाई ने कहे कि भाई सलाह ले रहा था का है कि खेतर ने निराई गुड़ाई जरूर करे, जी भी डोरा है, कुल्पा है, जी भी अपर करपोक है, अरेन काड़ा है, ये जरूर करे। इन्हें देखिए हुए कि मिट्टी में जी केशी कहीं है, केपिलरी के आपड़ा ये कोशिकाएं ये टूटी जाए। इन्हें थे कि भूमि में जी भी आसपास है जी मौजूद नमी है, वाष्पीकरण कम थी जाए तो फसल नी जी जड़ी है लंबा समय तक अच्छी बन थे की रे, नमी है निराई गुड़ाई करवा थे की नमी है फसल ने मलती रहे, ताकि आप जी भी पौधा है मक्का में है सोयाबीन में है इन्हें थे की वृद्धि थाय। तो किमने किसान भाई अपना जी भी वैज्ञानिक तरीका थे कि वैज्ञानिक तरीका ने सलाह थे कि अपने कि कम पानी है भाई आज जरा खीसो करो है कि भाई अगर नहीं पड़ू हो तो किसान भाई इंतजार नहीं करे, मैं कह के भाई ना अगर निराई गुड़ाई अपने करेंगा हरी देंगा करपो दे देंगा तो मिट्टी ऊपर थे कि रुकाई जाएगा ऊपर नीचे थी जाएगा रुकाई जाएगा एवं नहीं। देखो अपने पौधा ने मजबूत बनाई रखवा है, तो करपो है जी भी केपिलरी है ये सवार तो रहू है, अपने मैं देखू के भाई करपा ने वेस में भी गेप रही जाए, इन्हें थकी अगर रही जाए तो बस आप अठ थकी भी काढ़व पड़े, तो इन थकी हूँ कि जी कोशिकाएं है जी ने जड़े है ये मजबूत बनी रहे एवं नहीं कि हुकाई जाए। तो किसान भाईओ आ हंग्रे किसान भाई ने ध्यान रखव जो है कि पानी के भाई कम पड़ी रो थको है हमारी फसल हुकाई रही थे कि है या पे पानी की जरूरत है, तो एवं समय में जरा भाई ने तो पानी की व्यवस्था है तो भाई पानी पाई रह सका है, हालांकि एवं तो धोखो नहीं करे भाई नेक बाबा, पर अपने जी भी काम खेतर नु समय माथे करते रहू है ने जी भी खरपतवार नियंत्रण वगैरह, हालांकि अभी तो एटलो भी खोर नहीं छो किम के पानी वेस्ट में रोकाई गयो, तो इन्हें खातिर थे कि पाने जी भी खोड़ है वदार नहीं उग्यू, तो इनमें अभी तो अपने नियंत्रण करवो तो नहीं पड़त आज तक की है करपा सलाड़ा था कि भी खोड़ है नकरी जाएगा। तो किसान भाई अपनी बात नो जरूर ध्यान रखे, किसान भाईओ अगर अजी अपने बात करेंगे भाई खेतर में काम काज करते वक्त कई बातों सावधानी राखी पड़े ये भी अपने बात करेंगे अगाड़ी, पर जी किसान मानसिंह भाई की बात है कि सोयाबीन फसल है धान की फसल है तो निराई गुड़ाई अपने कर ने इने हाथे अपने घर पर परिवार सोरे लाइन बैठे थे कर स्कूल मुकला दाणा ने भी हरते ध्यान रखकर मानसिंह भाई बात करी थे कि है, तो किमनी किसान भाई अपने हंग्र भाई ने मानसिंह भाई की बात होना ने पसे अगड़ी बात है ही कर
1: आजकल खेतर में मक्को बेचलो है कया खेतर में सोया बीज है कया में हाल है अपने बगड़ी भरिया में हाल एम बीजे ने हिंदी में धान एम के सूर अपने बनाओ एम करू है
2: कितनी जमीन कितनी है मानसिंह भाई तमारी
1: अमारे जमीन डुकरा ने
2: तमारे पास डुकरा डुकरी है की
1: हाँ अमार डुकरा डुकरी है ने
2: आनी उम्र कितनी है
1: दवाई नो छिड़काव मैं पसे एवो पता है कि दवाई थकी नहा जाता है पसे उपाड़ है
2: पानी
1: अपना मतलब खेत में अच्छी तरह जाए।

0: अच्छी पढ़ाई चलती होगी।
1: हाँ पढ़ाई बढ़िया चले, मैं पीओ के समय विचार करूँ।

सोना जयपुर वेटरनरी कराया था का ये डिप्टी सोनी नर्सिंग कराया था का तुम्हारे बे मनकन एटली हिम्मत सोरा भणाया था का पासो पास सोरा तो तमाम हूँ विचार है सोरा भणाने वास्ते नौकरी लगाने शादी करावा या बेले करावा का करते हो।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान भाइयों, देखो भैया मानसिंह भाई में तो खूब अच्छी जानकारी आ रही के अभी जी निराई गुड़ाई नो काम सालेरी थकू है ने हरते काम करे ने काम ने हाथे हाथे जी सौरभ भणावी रीता कहे तो अने भी समय आलवो जरूरी है। समय समय माते भी अने भी ध्यान राखव है। समय समय माते जी भी जी भणेल थकू है वाजा ने मलवु है स्कूल में मलवु है वही अभिभावक ने जिम्मेदारी बने क्योंकि अपने किसान भाई ना जो सोर भणी रहे हैं कि भी सोर भणी रहे हैं तो खेत में तो काम रेस करो पर समय माते स्कूल में जाने भी जी अभिभावक ने मीटिंग थाय एने में जे टीम काढ़े ने जाने मलवु भी जरूरी। भाई देखो मानसिंह भाई खूब बढ़िया जानकारी आ ली थे कि खेती ने हाथी भाई ने जी सोरे नु ध्यान राखव जरूरी है। अपने बात करो कि कैच द रेन अभियान भी सालेरो थको है। अपने भारत सरकार जी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जी सलाह थका है जल संरक्षण अभियान आनो खास मुख्य उद्देश्य है कि जी बारिश नो पानी है एनो इकट्ठो करवो है संग्रहण करवो है ने अपनी जी भूमि है एनी अंदर पानी नो स्तर है बढ़ावो है। भाई खूब बढ़िया जी अभियान है सरकार इनो कदम उठावी थकी है। अभियान ने बारा में अपने हम्र मानवी हम्र किसान भाई ने जागरूक रहो भी जरूरी है। बारिश नो जी पानी है ये आमिस बर्बादी थकी नहीं सलो जाए भाई नदी नाला में जातू रहे तो अपने जी छोटा मोटा जी डेम बना थका है तलावड़ी बनी थकी है कुआ भी है तो इनमें पाइपलाइन थकी या नारी थकी एने सूखा कुआ में पानी बारिश नो नाके ताकि अपने जी जमीन में जी पानी नो स्तर है ऊपर उठी सके। किसान भाई देखो आना अभियान नो खास मुख्य उद्देश्य सा है तो जी कैच द रेन अभियान है तो इनी अपने बात करी। किसान भाइयों देखो सोरो भरो थको है किसान भाई मारा हमें देखी रहे थका है कि भाई विना बेन घनी बातें करता जाई रहे थका है बातें भी जरूरी है किसान भाई पर संध्या वाला नो टाइम है। किसान भाइयों एक भजन आपने होने ला पसे जी भी काम काज ने बातें है ये आपने करा।

जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
1: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा

0: बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
2: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
2: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाए
2: और अपना निःशुल्क नामांकन कराए।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संभव, पेंशन से सुरक्षित उनका घर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भैया देखो इतलो बढ़िया भजन होते मन एकदम हल्को थे गए जी भरवा मन है तो पर देखो अचानक जाते जाते बे बातें हजी करी है कि बारिश ना मौसम में अपने खेतर में काम काज अपने कर तो एने में सावधानी भी राखी अपने घनी जरूरी है क्योंकि किसान भैया आए दाड़े अपने जे भी आ जहरीले जानवर थी कि आपने घनो डर रहे क्योंकि खेतर में जहाँ झाड़ी थी गई सारो मोटो थी गये अपने लेंदवा जो तो अपने पोगे में देखाय नहीं घनो डर रहे तो किसान भाई सब थे कि पहले तो जे भी अपने खेतर में जाइए थे कहीं हेडा पारी नो ध्यान रखे जे भी हेडो है वहां सफाई कर ले नहीं पसे खेतर में लेंदवा बदले बहे ताकि जे भी हेडा है या गाड़ी है अपने देखाय जाए इमने घर में भी अपने कामकाज करो पशु न करो तो भी ध्यान रखे किसान भाई ने किसान भाई देखो अपने भी ध्यान रखो भाई मारे तो खूब बातें करवी थी पंची सोरा नो टीम है भाई पुरेशोर टीम नो मान ही अपने रखो जरूरी है तो आज तो अपने सूटा पड़ा काले अनाज टीम मे हंग्र किसान भाई बने थे कि फेरी मलवो थेगा राम राम राम राम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम दी बाट उड़ीकता सगला अपना काश्तकार भाया ने बैना ने चंचल रोनी भरियो मिठो मिठो हरे भरे सु राम राम और सगला बड़ा बूढ़ा ने एक बार ओ जीव ढोगरा जैसा रेणु बहन आपने भी एक बार ओ जीव घने मानू राम राम सा
3: राम राम सा।
2: देखो आपा लाडला कार्यक्रम में भी मौसम री बात कर रहा और जब मौसम की बात हो वे तो रुत है बरसात की।
3: जी सर,
2: बहुत सारा काम आपा भी करा हाँ सोचा हाँ, और अगर जूना टेम की बात करा तो बिरखा सु पहली ही गांव का गांव हिल मिलर एक काम करता कि कुआ तालाब बावड़े के जो गैलो हो तो बरसात का पानी को बीके सफाई करता, और आज भी गांव में लोग करे ही है। और ये बात ने देखता थका और प्रदेश में पानी की स्थिति ने दुनिया भर में पानी की जो भयावह स्थिति है पानी को जो स्तर जल स्तर घटतो जा रही हो भी ने देखता थका एक अभियान चलायो जा रही हो कैच द रेन अभियान, यानी कि जो बरसात को पानी है भी को संग्रह

0: में संचयन में और ज्यादा से ज्यादा खेत को पानी खेत में, गांव को पानी गांव में, कूट को पानी कूट में रह सके।
1: हाँ चंचल बहन आपने जानकारी दी, ये अभियान को बहुत सारा उद्देश्य है। जी हाँ, बरसाती पानी ने किया सहेजनो है, भूजल स्तर बढ़ जाए लो इसू। इसके अलावा जत्ता भी राजस्थान में तालाब बावड़ी कुआ और नाड़ी आदि है अने पुनर्जीवित किया की जा सके है। इसके अलावा पानी की बर्बादी ने रोकबो वो भी को उद्देश्य छे। इसके अलावा आम आदमी जो छे अपना टाबर बूढ़ा बच्चा सब ने जल संरक्षण री जागरूकता फैलावा के खातिर वो अभियान आयो है। इसके अलावा अपनी पीढ़ी खातिर जो आगामी पीढ़ी छे बाके खातिर पानी बचावन खातिर वो अभियान आयो छे।
0: बिल्कुल, और देखो यो ना एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, एक संस्कार की तरह आपने अपना टाबरा ने सिखानो चाहिए। क्योंकि कहवे है ना कि पानी बिन सूखा अधर, जीवन जइया पीर, कोयल भूली कोहक नो मांग रही है नीर। तो यह स्थिति न आ जावे कि आप पानी की बूंद बूंद ने तरस जावा, क्योंकि जल ही जीवन को आधार है, इन्हें आपने माननो पड़ेलो साहब।
1: जी सर सही कह रहे हो, क्योंकि राजस्थान में बरसात की हमेशा ही कमी रहवे है। तो जतनो पानी आपने राजस्थान में बिरखा सु मिल जावे बिना सहेजनो है, यू ही अभियान को उद्देश्य है।
0: बिल्कुल, और आपनो उद्देश्य है कि जो भी नवाचार चले, जो भी नई बात होवे, वह अपना श्रोतावा सु आपस साझा करा, मासू हिल मिलर ई की बात करा। अपना श्रोता समय सारू अपनी बाता ने या जो भी जानकारी आपा मां तक पुगावा हां, वे चिट्ठी पत्रिया मेल फोन कई माध्यम है आजकल तो तकनीक को युग है, आपने तक ओजू पुगावा है कि चौकी लागी या और काई आपा कर सका हां। तो बीसु आपा ने जिया हौसलो आपनो बध जावे है, भी तरीका हुई जब कार्यक्रम में गीत संगीत आ जावे है तो कार्यक्रम को भी एक कहना की जो रंगत है वह बध जावे है। साहब
1: चंचल बहन सुना दो ये गीत।
0: बिल्कुल सुनो सा, मन पहली एक विज्ञापन।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: आप है बिजलियां भी चमके, बिरखा भी हो गए, बिरखा को संचयन भी हो गए, और जो खेती है भाभी खूब खूब खूब बधे, और जो काश्तकार है वे आगे बढ़े। ये गीत रस आ गई, आगे जब बड़बा की बात आवे तो नवाचारा की बात होवे। आज कार्यक्रम में भी नवाचारा की बात कर शादी हूँ, और दौलत भाई आ गया है, सागे पावना ने लिया है, तो आगे का कार्यक्रम की बागडोर दौलत भाई अब आपने संभला दिया, मैं तो बैठक जानकारी सुन सा। ठीक है,
1: ठीक है।
2: स्टूडियो में मौजूद है राजेंद्र कुमार शर्मा जी, उप निदेशक है कृषि अभियांत्रिकी कृषि आयुक्तालय जयपुर पधारिया है, और आप यहाँ सु बातचीत कर ला कृषि विकास में कृषि यंत्रा को योगदान। सबसे पहले कृषि सु संबंधित काम जो चीजा है यंत्रा सु बहुत आसान होगी है, और बात करा अगर कृषि यंत्रा की तो सबसे पहले आप कहीं कहनी चाहो कि आधुनिक खेती के मायने परंपरागत खेती जो आप करता आया और आज जो यंत्र उपलब्ध है बाजार में कितनी आसान और कितो योगदान।
3: सबसे पहले तो किसान भाइयों मैं आप सबसे राम राम करता हूँ। पुराने जमाने में जो खेती होती थी वो अपने बैलों से बैलों की जोड़ी से अपने जो खेती होती थी, और आज वो सारे परिप्रेक्ष्य आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सब चीजें बिल्कुल ही बदल चुकी है। आज किसान भाई सभी जो है जो भी खेती के काम है जो भी हमारी संक्रियाएं होती हैं जुताई है बुआई है जो भी अपनी संक्रिया सारी निश्चित समय पर करनी होती है, और इसके लिए हमें आजकल गांवों में जैसे देखा जाता है कि अपने मजदूर नहीं मिल पाते खेतिहर मजदूर, तो कृषि यंत्रों को इसलिए काम में लेकर के अपने जो भी काम है किसान भाई आप लोग जो है समय पर पूरा कर सकते हैं, और बिना कृषि यंत्रों के आज खेती की परिकल्पना मेरे हिसाब से नहीं की जा सकती है।
2: बिल्कुल बिना यंत्रा सु खेती की परिकल्पना को नहीं कर सके, लेकिन एक दौर हो जो कि आप ही बता रहे हो बैल सु और पशुओं से अपना हल जोतता, और एक पूरी प्रक्रिया ही चाहे वह खाद बीज की बात हो चाहे कटाई की बात हो चाहे निराई गुड़ाई की बात हो या लाटो काटवा की बात हो सब चीजा लोग हाथों करता, लेकिन यंत्रा की चीजा आई तो बहुत आसान होगा और समय की जो है वो अभावी बहुत बड़ी बचत होगी, लेकिन लागत है वो ज्यादा बढ़गी। अड्डा एक सवाल वो जानबो चाहूँ की खेती में सभी काम निश्चित समय पर कराया जावे, कौन कौन सा काम आसान हुआ है यंत्रा की वजह से?
3: देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊँ की खेती संबंधित सभी काम को निश्चित समय पर किया जाता है तो ही अपनी खेती जो एक मुनाफे का सौदा हो सकती है, नहीं तो किसान भाइयों आपको नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे मैं बताऊं जैसे आप वर्षा आधारित जो खेती करने वाले हमारे किसान भाई है बारिश शुरू होने से पहले वो खेत की जुताई करके अपने खेत को तैयार रखते हैं, बारिश होते ही बुआई का काम शुरू करना होता है, खरपतवार को समय पर हटाना होता है, फसल पर समय पर आवश्यकता अनुसार जो भी आपको मान लीजिए कीड़े वगैरह कीटे पतंगे कुछ भी लग गया हो कोई रोग लग गया हो तो ऐसे में कीटनाशक आदि का भी स्प्रे अपने करना होता है, फसल के पकने पर मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए कभी मौसम खराब हो सकता है तो हमें तुरंत फसल कटाई की व्यवस्था भी करनी होती है, फसल कटाई के बाद में फसल घाई का काम किया जाता है जिसमें फसल से दानों को अलग किया जाता है, फिर दानों को साफ और फिर उसकी ग्रेडिंग का काम किया जाता है, तब कहीं जाकर के हमारे किसान भाई अपनी फसल को बाजार में बेचने के लायक बना पाते हैं।
2: यंत्रा की बात कर लें एक बार, कौन कौन सा यंत्र शुरुआत सु अगर बात करा के किसान बिजाई सु पहली भी कई चीजा है जैसे की बीजोपचार की बात करना, ये भी एक यंत्र आजकल आ गया पंचायता में रखेड़ा रहेगा बिरुण बीजोपचार भी हो जाए, कौन कौन सा यंत्र शुरुआती तौर पे किसान काम में लेवे है और की तरीका सुबह को काम आसान हुई?
3: सबसे पहले बीजोपचार की बात आती है, जो पंचायतों में अपने जो एक सीड टिटिंग ड्रम अपना रखा हुआ है सभी जगह करीब करीब, उसमें अपने जो भी बीज हम ले रहे हैं उसको उसमें

0: अपने जो निश्चित मात्रा में अपने जो केमिकल्स वगैरह जो भी हम बताते हैं, जो भी रिकमेंडेड है हर फसल के लिए, हर बीज के लिए अलग अलग, उनको डाल के उसमें मिला करके उसके बाद में फिर उसकी बुआई की जाती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे सारे जो भी यंत्र काम में लिए जाते हैं अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए, संक्रियाओं के लिए, उसमें से जुताई के लिए जैसे जो मुख्यतः हमारे जो चल रहे हैं उसमें एमबी प्लाउ है, डिस्क प्लाउ है, रोटावेटर है, बुआई के लिए जो है सीड ड्रिल है, सीड में फर्टिलाइजर ड्रिल है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, कटाई के लिए रीपर है, गहाई के लिए थ्रेशर और सीड क्लीनर ग्रेडर, ये सारे जो यंत्र हैं ये किसान भाइयों के लिए सारे कार्यों को बिना मजदूरों पर निर्भर रहते हुए अपनी खेती का काम करने के लिए पर्याप्त होते हैं और इनसे अपना काम अपना समय पर करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन इतना यंत्र एक किसान के लिए तो खरीद वो तो आसान को ना, माना कि काम है बहुत आसान हुई है, तो कई किसान आपको उपयोग किराया पे लेके करे, कई किसान सामूहिक तौर पे खरीद कर सके, कई सरकार की ओर से कोई व्यवस्था ऐसी है कि जगह जगह आप बिना काम में ले सको, क्योंकि खेती आसान यंत्रासु तो होगी
0: जी,
1: लेकिन जब यंत्र की खरीदवा की और खेती में काम लेवा की बात करा, जब उत्पादन की आप लागत कम करवा की बात करा, तो यंत्र का उपयोग से लागत बढ़ जाए।
0: सबसे महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है कि यंत्र खरीदना ही एक बहुत बड़ी अपना जो है ना खेती का एक पूरा कार्य जो है अपना नहीं हो गया है। यंत्र हम जब भी खरीदते हैं तो यंत्र की लागत बहुत ज्यादा होती है, और एक हमारे जो किसान भाई लघु सीमांत जो छोटे किसान है वो क्या होगा कि जैसे एक फसल में वो ज्यादा से ज्यादा दो दिन या तीन दिन काम आ सकता है, तो उस यंत्र में उन्होंने जो भी पैसा लगाया फिर उसको साल भर उसको संभाल के रखना यंत्र को अपने काम में लेने के बाद में, फिर एक ही खेती में एक ही यंत्र काम में आता नहीं है, तो फिर कितने तरह के यंत्र वो लेंगे, लेने के बाद में उसको चलाने के लिए ट्रैक्टर भी चाहिए। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में भी और इस साल भी हमारे जो लघु सीमांत भाई है वो अपने सारी खेती के जो अपनी ऑपरेशंस है, संक्रिया है, वो बुआई जुताई सारी संक्रिया, फसल कटाई भाई, इन सब के लिए हमने एक कस्टमाइजिंग सेंटर, कृषि यंत्र किराए केंद्र जिसको बोलते हैं, उनकी एक योजना हमने शुरू करी थी सन 2021 से वो शुरू है।
1: यंत्र की ट्रैक्टर कृषि के मायने सब महत्वपूर्ण है
0: जी,
1: ट्रैक्टर और हल जिन आप बुआई काफी टाइम करता आ रहा है, कहीं कोई अनुदान कोई चीजा किसान ने यंत्र से जोड़वा के लिए कोई चीजा इसके मायने है अभी तक शुरू हो पाई है कोई?
0: देखिए अभी जैसे मैं बात कर रहा था पहले भी जीएसएस केवीएसएस पे जो अपने कस्टमाइजिंग सेंटर्स जो अभी इस वक्त भी बन रहे हैं उन पे, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा ये ट्रैक्टर सहित जो भी यंत्र वो खरीदते हैं उन पे हम 10 लाख रूपये की लागत का 80% लगभग 8 लाख रूपये अधिकतम जीएसएस प्रति जीएसएस केवीएसएस हम अनुदान देते हैं, जहाँ से किसान भाई अपने यंत्र ले सकते हैं। इसके अलावा अब किसान भाई अगर मान लीजिए सक्षम है और खुद अपने स्तर पे किसी यंत्र को खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी राज्य सरकार और कृषि विभाग ने एक भारत सरकार प्रवर्तित केंद्र सरकार प्रवर्तित एक योजना है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इस योजना के जो भी प्रावधान है उनके अनुरूप और उसमें जो भी अनुमोदित कृषि यंत्र हैं जो जितनी भी उसके लिस्टेड हैं उन सब पे पात्रता के अनुसार जो किसान भाई हैं उनको अनुदान देने की व्यवस्था इसमें योजना में शामिल है।
1: बिल्कुल, देखो अपन बात कर रहे हैं कृषि यंत्र की, तो अपन मोबाइल को जमाना है, तकनीकी युग है, कई बार देखा कि विदेशों में जो खेती कर रहा है वाकई में यंत्र है वो कटाई से लेकर के अनाज निकालवा से लेकर के सब चीजा, आज की बात करा आप अगर प्रदेश में बात करा तो कई ऐसी चीजा यंत्र इतना महंगा है कि आप उपयोग में कम ले रहा है या बाकी किरायों भी इतना ज्यादा लगे, और अगर आम किसान काम में ले वो चावे तो की तरीका सु और कटा सु ले सके?
0: देखिए अगर खुद अगर वो खरीद के रखता है अपने पास में तब तो उसकी मर्जी, तब अपना काम में ले सकता है या खुद अपने अड़ोसी पड़ोसी
1: अगर वो सक्षम है तब खरीद सकता है,
0: तो खरीद सकता है, और अगर वो खरीद नहीं सकता है तो जो कस्टमाइजिंग सेंटर जो हमारे बने हुए हैं, गत वर्ष तक जो हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर सारे जो स्थापित हुए हैं उन पर हम एक मोबाइल ऐप आधारित एक मॉनिटरिंग सिस्टम उसमें राज किसान कस्टमाइजिंग सेंटर ऐप के नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया है, उस ऐप पर जितने भी हमारे राज्य में कस्टमाइजिंग सेंटर जो भी स्थापित हो रहे हैं या हुए हैं वो सब उनकी पूरी उसमें डिटेल उनका विवरण होगा, उनके पास किस किस सेंटर में कितने कितने कौन से कृषि यंत्र ट्रैक्टर सहित उपलब्ध हैं और वो कब आपने बुकिंग करा सकते हैं, किस तारीख में बुकिंग करा सकते हैं, कौन सी फसल के लिए बुकिंग करा सकते हैं, सारी फैसिलिटीज उसमें होगी। कंफर्म होने के बाद बुकिंग का उनके पास में रेस्पॉन्स भी आएगा, वापस जवाब भी आएगा कि आपकी तारीख इतनी तारीख को इतने बजे आपको ये मशीन आपके खेत पे पहुंच जाएगी, तो रेट लिस्ट भी उसमें फिक्स होगा, उसमें आपका लगभग बिल कितना आएगा वो भी बता दिया जाएगा, तो आपको बहुत ही मतलब किसान भाइयों को सुविधा इससे हो जाएगी, इससे एक मॉनिटरिंग हो जाएगी किस कस्टमाइजिंग सेंटर ने किस एरिया में किस खेत में कितना काम किया, ये सभी चीजें ऑनलाइन होगी। रहेगी और हम सभी लोग इसको डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं और कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें माली किसान भाई को कोई दिक्कत आई तो उसमें अपना जो है ग्रीवेंस अपनी शिकायत भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। अब बेटा बात कर रहे हैं कि किसान ई तकनीक से जुड़े कृषि यंत्र से जुड़े जानकारी सवाने है कौन कौन सा यंत्र ऐसा है जिसको उपयोग किसान ने ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए जिसको कि समय की बचत भी हो और बाकी जो कृषि तकनीकी

0: कृषि को जो उत्पादन है भी के मायने भी कोई ज्यादा फर्क कौन पड़े। और जो आप किराया की बात करो कि जितनी मजदूरी में काम करे बीस कम लागत के मायने मांग को काम, क्योंकि यंत्र कई तरीका का है, कौन सा यंत्र किसान ने आज के समय में लेना चाहिए।
1: सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन ये एकमात्र जो अपने कृषि यंत्रीकरण की योजना भी चलाई जा रही है, और इसमें जो मैं आपको संक्रियाओं के हिसाब से बताता हूँ, जैसे खेत की तैयारी के लिए है, फसल बुआई के लिए, खरपतवार की सफाई के लिए, कीटनाशक के स्प्रेस के लिए, फसल कटाई, गहाई, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग से संबंधित लगभग सभी तरह के यंत्र इसमें किसान भाइयों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसमें जो है सामान्य श्रेणी के जो कृषक है उनको कृषि यंत्र की लागत का जो अधिकतम 40% तक अनुदान, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत और महिला कृषकों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 50% तक अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और जो अब आप बात करें कि कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनके उपयोग से वो अपने समय की बचत कर सकता है और बहुत अच्छे से खेती का काम अपना कर सकता है, तो मैं सबसे पहले जो एक जमीन को लेवल करने की जो बात आती है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा यंत्र है, लेजर लैंड लेवलर के नाम से बोलते हैं इसको। ये हमारे कस्टमाइजिंग सेंटर्स पे, सभी पे तो नहीं है लेकिन कुछ कस्टमाइजिंग सेंटर्स पे उपलब्ध है, और कुछ जगह किसान भाई अपने जो अपने काम में लेते हैं उसके बाद में अपने साथी लोगों को भी अपने किराए पे देते हैं। ये यंत्र जो है खेत की अपनी सटीक जो लेवलिंग है उसके काम में आता है, उसे पूरा स्लोप मेंटेन करता है, इससे समय की बचत, कम त्रुटि रहित काम करके कम परिश्रम में भूमि को आराम से समतल किया जा सकता है। इसकी जो कार्य क्षमता है जैसे 700 से 850 वर्ग फीट प्रति घंटा प्रति बीघा होती है, इसकी लागत लगभग 3.5 लाख रूपये के करीब है, जो की किसान भाई नहीं ले पाते हैं, जो सक्षम नहीं होते वो कस्टमाइजिंग सेंटर से ले सकते हैं जी। इसके बाद में जैसे एक उन्नत कृषि यंत्र एक और है अपना जुताई के काम आता है, 2 बॉटम या 3 बॉटम रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाउ जी। इसको जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उसकी जो है मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए ये यंत्र काम में लिया जाता है, इसको मिट्टी पलट हल भी बोलते हैं। ये अपना 30 से 50 HP तक के ट्रैक्टर से चलाए जाते हैं। इसका जो प्रयोग है अपना जो प्राथमिक जोत है, शुरुआत में जो अपन जोत करते हैं, जुताई करते हैं, उसके लिए लिया जाता है जी। ये खेत में 1.5 फरो या जैसे असमान धसे हुए जो है ना स्थान ऐसे खड्डे वगैरह नहीं छोड़ता है, एक समान अपने मिट्टी पलटता है, और इसकी कीमत लगभग 60,000 रूपये से मॉडल के हिसाब से 1,20,000 रूपये तक होती है, और इसकी कार्य क्षमता 1 बीघा प्रति घंटा तक की होती है जी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो चलने वाला यंत्र है, जो 3-4 तरह के ऑपरेशन एक ही बार में कर देता है, ऐसे यंत्र के बारे में आपको बताता हूँ, उसका नाम है रोटावेटर। ये यंत्र मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 2010-11 के करीब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, इसको लोगों के चलन में लाने के लिए। इसको पहले जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जीएसएस केवीएसएस के थ्रू हमने उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था आरकेवीवाई में, और वहाँ पे रखवाया था, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था किसानों के खेतों पे। तो वो ये यंत्र इतना काम का है कि आपका जो सबसे पहले आपका मान लीजिए फसल अवशेष है उसके ऊपर में चलाए तो पहले तो फसल अवशेष को काट देगा, काट करके उसको पूरा मिट्टी में मिला देगा, जमीन को भूरभूरा बना देगा, उसके बाद में उसके पीछे एक पाटा चलता है तो आपके पूरे खेत को भी लेवल कर देता है। तो यूं करने के बाद में आपका रोटावेटर जो है आपके 4 ऑपरेशन एक तरह से हो गए, उसके बाद में सीधे आपको सिर्फ बुआई करनी है। तो आप देखिए कितना बढ़िया एक उपकरण हो गया आपके लिए। ये हरी खाद को भी एक तरह से मिट्टी में मिला देता है, और इसका प्रयोग गीली सूखी दोनों तरह की भूमि में किया जाता है, चावल में भी कर सकते हैं। और इसकी कार्यक्षमता जो 3 से 4 हेक्टेयर प्रतिदिन तक की होती है, इसकी लागत जो लगभग 70,000 से 1.25 लाख रूपये तक की होती है।
0: तो एक तरफ तो रोजगार की बात करा, और दूसरी तरफ आदमी और जो मजदूर काम करे भी जगह वो मशीनरी काम में ले, हालांकि काम आसान बहुत ज्यादा हो जाए।
1: बिल्कुल
0: है। तो किसान ने कहीं कहनी चाहो क्योंकि कृषि को विकास जद आप कर सका, क्योंकि बिना कृषि यंत्र को जो योगदान के या को विकास भी संभव हुआ नहीं, कितना उपयोग किसान ने लेना चाहिए यंत्र को और कितो में कृषि का विकास में यू योगदान दे रहा है।
1: देखिए आज की तारीख में तो कृषि जो है, कृषि की जो संक्रियाएं हैं, समय पर जो हमें अपना खेती का कार्यक्रम करना होता है उसके लिए यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना यंत्रों के आज खेती को हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे हम इसको कर पाएंगे, और खेती का जो भी काम है उसको करने के लिए हमारे जो यंत्र है वो सबसे पहली बात तो है कि उसकी लागत को कम करते हैं, मजदूरों पे जो हमारी निर्भरता होती है उसको कम करते हैं, हम ज्यादा उससे किसान भाई हमारे जो उससे अपना लाभ कमा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और उसका जो फसल संवर्धन का और इसका कटिंग के बाद में जैसे सफाई का, ग्रेडिंग का जो सिस्टम है उससे उसकी फसल का मूल्य संवर्धन, हमारे किसान भाई अपने उसका जितनी भी अच्छी फसल का उस सफाई और ग्रेडिंग करेंगे उससे उनका मूल्य भी ज्यादा मिलेगा। इस तरह से किसान भाइयों के लिए और हमारे राज्य और हमारे देश के लिए कृषि विकास में हर तरह से कृषि यंत्रों का योगदान उसे कभी भूल नहीं सकते, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि सभी किसान भाई इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपनावे।
0: बिल्कुल, कृषि विकास में कृषि यंत्र को योगदान इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत विस्तार से आप जानकारी दी। राजेंद्र कुमार शर्मा जी, उपनिदेशक कृषि अभियांत्रिकी, कृषि आयुक्त।

0: हमने जयपुर से पधारिया, इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको गुणो गुणो धन्यवाद।
1: दौलत भाई धन्यवाद तो कोरो देवा को नहीं, और धन्यवाद तो आपने भी है, क्योंकि कहवे है ना कि अगर अर्जुन नहीं हो तो कृष्ण जो है भगवत गीता को सार कहीं बताता, तो पूछ वालों को भी बत्तो ही महत्व है। तो आपने भी धन्यवाद स्वरूप एक गीत सुनावा साहब, सुनो मीठो सो गीत
2: जी सुनो।

0: देखो ई मीठा सा गीत रस आ गया ही, अब कार्यक्रम खेती बाड़ी रो टेम पूरो हो रियो है, तो ऋण बहन चाला और करा
1: राम राम, राम, राम सा।

0: आप श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आम एयर चैनल है। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आप नहीं बना

हैं उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय ये अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी ऊषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका है जया भारती।

नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा, तो विपक्षी दलों के सदस्य नारे

0: ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमनपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अरे सरला, ये मुंह अंधेरे हाथ में बोतल लेके कहाँ जा रही है?
1: जंगल जा रही हूँ दीदी।
0: और कहाँ?
1: इससे पहले कि दिन निकले उजाला हो मैं जंगल में जाके आ जाती हूँ।
0: पर तू जंगल क्यों जाती है? मेरे घर में तो शौचालय बना हुआ है ना?
1: बना हुआ तो है दीदी, पर उसमें तो उपले रखे हुए हैं। और उस शौचालय में एक बार शौच के लिए जाने का मतलब है 3 बाल्टी पानी खर्च करना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पानी कितनी दूर से लेकर आती हूँ। अब इतनी मेहनत से लाए गए पानी को इस तरह बेकार में ही थोड़ी उड़ा दूंगी।
0: बेकार में? अरे बावली, जरा सोच, पानी बचाने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मुसीबत में डाल रही है।
1: तुम्हारी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही।
0: अरे सरला, जरा दिमाग पे जोर डाल कि तेरे मल पे कितनी मक्खियाँ बैठती हैं और वही मक्खियाँ वहाँ से उड़कर कई घरों में जाकर उनके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं और उन चीजों को जब वो लोग खाएंगे तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
1: हाय दैया, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर आज से ही शौचालय के उपले बाहर निकालकर हम सब उसे काम में लेना शुरू कर देंगे।
0: ये हुई ना समझदारी वाली बात।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं सातवां आसमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण के आवाजों में। सूरज सनीम का लिखा गीत है और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

थंडर द रिवेंज, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शाश्वत सचदेव और जैस्मीन की आवाज में। इस गीत को लिखा है जैस्मीन सैंडल्स और रिबेल ने और संगीत से सजाया है शाश्वत सचदेव ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म से राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाजों में गीत है। इरशाद कामिल का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमको सुनवा रहे हैं देसी बॉयज फिल्म से मीका सिंह और शैफ अली की आवाजों में। इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

मीका सिंह और शेफ अली के गाए देसी बॉयज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। अब से थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के पश्चात समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर उर्दू में प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में चर्चा होगी एफआईएच हॉकी विश्व कप, भारत जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट मैच और कॉमनवेल्थ की तैयारियों की, और ये भी जाना जाएगा कि कैसा रहा चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पहला दिन। लेकिन पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित, हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई टीम की कमान। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कल पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला बृहस्पतिवार से शुरू होगी। कार्यक्रम को शुरू किया जाए हॉकी विश्व कप की तैयारियों के साथ, जहां हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी भरपूर मौका दिया गया है। मोहित एचएस और सूरज करकेरा को गोलकीपर के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि डिफेंस की जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाज के कंधों पर होगी। मिडफील्ड की कमान मनप्रीत, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की तिकड़ी संभालेगी। साथ ही नीलाकांत शर्मा और होनहार युवा खिलाड़ी राजेंद्र सिंह और आदित्य अर्जुन लाला के इसमें शामिल होंगे। अटैक की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाखड़ा के कंधों पर होगी। भारत को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करेगा। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो टीम अब तैयारियों को अंतिम रूप देने की कड़ी में पहुंच चुकी है, और अब टीम के चयन पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के मुख्य चयनकर्ता और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी आरपी सिंह। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स कैन में। और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह आपसे हमारा यही है कि भारतीय टीम में इस बार अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कई युवा चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, तो फिर ये क्या कहा जाए कि विश्व कप जैसे बड़े अवसर पर टीम में संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश की गई है?
2: देखिए, ये 6 महीने से जो हमारी टीम प्रिपेयर्ड हो रही थी

0: रांची जितनी भी प्रतियोगिताएं टेस्ट मैचेज ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, अभी आपने वर्ल्ड हॉकी लीग जितनी भी हो रही थी, तो उसी के ही ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप की और क्या कॉम्बिनेशन से खेलेंगे और कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होगा, नए भी हैं पुराने भी हैं, पुराने क्या जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एज वाइज मैं बात नहीं करता, जो आज बेस्ट है उसकी बात करता हूँ। तो कुल मिला के मैं देखूं तो जो बेस्ट हमारे पास लॉट है या बेस्ट टीम है उसको सेलेक्ट किया गया है।
1: ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बेस्ट टीम को मौका देने की कोशिश की गई है, और इन नए खिलाड़ियों की जो टीम में मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं एक इशारा ये भी करती है कि भारतीय हॉकी में जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो एक पीढ़ी जो है तैयार हो रही है, वो काफी मजबूत है। मैं ये जानना चाहूंगा आरपी सिंह जी आपसे कि इस पूरी बेंच स्ट्रेंथ को डेवलप करने में नई उभरती हुई प्राइवेट लीग्स की कितनी भूमिका है।
0: देखिए, जो हॉकी इंडिया लीग फिर शुरुआत हुई है, उसके पहले तो अब रेगुलर नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन हो रहा है, सब जूनियर जूनियर सीनियर। बाकी जो हॉकी लीग है उससे बहुत फर्क पड़ता है, पहले भी जो हमारी हॉकी लीग हुई थी उसी का नतीजा था कि हम लोग टोक्यो में मेडल लाए, फिर पेरिस में भी ओलंपिक में मेडल लाए, एशिया में हमारी दोनों टीमें जा रही हैं, मेन वोमेन दोनों। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार वुमेन्स का भी हॉकी लीग हुआ था, मेन्स का भी हुआ था, उससे जो नई उभरती प्रतिभाएं हैं अपने सीनियर जो वर्ल्ड लेवल के बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनके साथ खेलते हैं, तो अपने खेल को उनको भी देखते हैं, फिर अपनी कमियों को भी दूर करते हैं।
1: जी बिल्कुल, उनके लिए एक मौका होता है। आपने टीम की परफॉर्मेंस की बात की कि ओलंपिक में पदक आ रहे हैं, लेकिन आरपी सिंह जी भारत ने आखिरी बार विश्व कप मेडल स्वर्ण पदक जो है 1975 में मलेशिया में जीता था, वो फाइनल मुकाबला जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था, अब 51 वर्षों का इंतजार हो चुका है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि ये टीम मेडल लेकर आती भी नजर आ रही है?
0: देखिए, ओलंपिक में तो हम लगातार ले रहे हैं, ये विश्व कप हम लोग 75 में जीते थे, उसके बाद से नहीं जीत पाए हैं, तो वो उसका एक मलाल है, क्योंकि हम ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, एशिया कप में, एशियन चैंपियनशिप में सब में मेडल दे रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप में इधर नहीं दे पाए हैं। तो सबसे पहला काम है हमारी टीम को क्वालिफाई करना, पहले अपना पूल क्वालिफाई करिए। वर्ल्ड कप जैसे प्रतियोगिता में सभी टीमें तैयार होके आती हैं, तो अभी पहला काम यह है कि हम सब टीमों को पहले पूल को जीते हैं। हर मैच हमारे लिए वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह होगा और हमारी टीम को हर मैच को फाइनल समझ के खेलना पड़ेगा, तभी हम मेडल की तरफ अग्रसर होंगे।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हर स्तर पर रणनीति होगी और मजबूत तैयारी ही आखिर में उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी उम्मीद भारतीय हॉकी कई वर्षों से इस टीम से लगा रहा है। और बात करते हैं स्क्वाश की। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में नाह सिंह, शानवी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुरुषों में आरवीर दीवान, युषा नसीफ और गुरवीर सिंह की टिकड़ी ने पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में जगह बना ली है। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय और महिला सिंगल्स में देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया।
2: चीन के चांगझो में आज चीन ओपन का पहले दिन खेले गए मुकाबले में एचएस प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ ने 21-10, 21-14 से हरा दिया, जबकि देविका सिहाग को थाईलैंड के बुसानन ओंग बाम रूंगफान ने 21-19, 19-21, 21-13 से हराया। प्रतियोगिता में कल कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन जापान के यूसी तनाका और आयुष शेट्टी इंडोनेशिया के अली फरहान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में जापान ओपन जीतकर आ रही पीवी सिंधु भारत की उन्नति हुड्डा के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष डबल्स में हरिहरन हमसाक रूरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग का मुकाबला करेगी। मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका गद्दे का मुकाबला चीन के फेन यांग जी और वांग डोंग पिंग से होगा। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी चीन के ही गाओ जिंगवा तथा चेन फंगहुई के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते सकते हैं कि भारत के कई अहम खिलाड़ी कल भारतीय चुनौती रखें।

0: पर सबसे अधिक नजरें होंगी भारत के लिए दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर कि जिस तरह का शानदार जापान ओपन गुजरा है क्या वो ये करिश्मा चीन ओपन में भी नशाती हुई नजर आएंगी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के साथ तीन टी20 मैचों की श्रृंखला के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 23 जुलानी यानी बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। यह मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा।
1: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में युवा भारतीय टी20 टीम एक और परीक्षा के लिए तैयार है। इंग्लैंड के निराशाजनक दौरे के बाद टीम की नजरें जिम्बाब्वे में खोया हुआ मनोबल हासिल करने पर होंगी। तीन मैच की श्रृंखला का पहला मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और अंतिम मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। तिलक वर्मा उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय टीम में कई नए चेहरों को मौका मिला है। प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को पहली बार टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। वहीं रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी टीम में वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी जिम्बाब्वे में खुद को साबित करने के इरादे से खेलते नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों के अलावा बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, विकेटकीपर ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेटगे और रवि बिश्नोई भी भारतीय दल का हिस्सा है। इस श्रृंखला में पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज पीवीएस लक्ष्मण टीम के कोच की भूमिका में नजर आएंगे। अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो टीम की कप्तानी सिकंदर रजा के पास है। टीम में ब्रायन बेनेट और डायन मायर्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल रहेंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 जीते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे में 2024 में खेली गई पिछली श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैस्ट।
0: एशियन गेम्स से पहले भारतीय इस युवा टीम के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। एक तो उस मनोबल को हासिल करना जो शायद इंग्लैंड दौरे में इस टीम ने कहीं ना कहीं खोया है, और दूसरा एक नई लय बनाना जिसके साथ हम एशियन गेम्स में इस टीम को उतरते हुए देखेंगे। हालांकि संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा नहीं है जो एशियन गेम्स के भारतीय स्क्वाड का हिस्सा है, तो देखना होगा ये टीम जिम्बाब्वे की धरती पर किस तरह का प्रदर्शन करती है। और इसके पहले जब ये दोनों टीमें जिम्बाब्वे में आमने सामने हुई थी तो भारत ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। हालांकि जिम्बाब्वे अपने मैदान पर उलटफेर करने की क्षमता रखती है, एक अच्छी टीम है जिससे अच्छी फाइट की उम्मीद होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी एक इसको एक्सपोजर ट्रिप के तौर पर, एक एक्सपोजर टूर के तौर पर लेना चाहेंगे, जहां पे वो बेहद कई सारा अनुभव लेकर के जापान के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की कोशिश करेंगे, जहां ये टीम एशियन गेम्स के लिए जाएगी। और एशियन गेम्स का जिक्र हुआ है तो अब चर्चा की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की भी। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है ये, जहां खिलाड़ी 10 खेलों और 6 पैरा खेलों में पदकों के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। भारत की ओर से तकरीबन 125-126 खिलाड़ियों का एक दल भेजा गया है जो 13 खेलों, जिसमें पैरा कैटेगरी भी शामिल है, उसमें पदकों के लिए मैदान पर उतरेगी। और इसमें स्टार जैवलिन थ्रोअर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू जो एक शानदार वेटलिफ्टर हैं, और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। और खेलों के इस दल और इस पूरे आयोजन से जुड़ी अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, सबसे पहले तो बात ये कि कितना बड़ा ये आयोजन होता है ये श्रोताओं को बताइए, और साथ ही कि भारत ने कितनी तैयारियां की हैं इस आयोजन को लेकर के।
2: जी शक्ति, इस आयोजन में 72 टीमें जो है वो हिस्सा लेंगी, जिसमें 56 जो अलग अलग राष्ट्र रहेंगे, जबकि 16 दल जो है वो आश्रित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो इस बार ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कई सारे खेलों को हटा दिया गया है, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, शूटिंग, ट्रायथॉन, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन जैसे खेल शामिल है। और अगर हम बात करें 2022 कॉमनवेल्थ की तो भारत ने 61 मेडल जीते थे उसमें, और जो स्पोर्ट्स हटा दिए गए उनमें भारत के 30 मेडल थे, तो यानी कि 47% जो मेडल थे वो खेल अब इस आयोजन से हटा दिए गए हैं।
0: जी बिल्कुल, जब आप ये कह रहे थे कि कितने खेलों को इस आयोजन में शामिल नहीं किया गया है तो शायद हमारे सामने वो मेडल्स और उन खिलाड़ियों की तस्वीरें भी ताजा हो रही थी जो इन खेलों में भारत के लिए अच्छी संख्या में बड़े नंबर्स में मेडल लेकर के आते थे। और 2022 का आपने जिक्र किया, उसके पहले 2018 की बात की जाए या फिर 2010 जो भारत का सबसे सफल कैंपेन था दिल्ली में, भारत ने इसको अंजाम दिया। ये खिलाड़ी इन इवेंट्स में, इन

0: शानदार मेडल लाते हुए नजर आए हैं। हालांकि अब नजर ये होगी कि जो खेल हमारे सामने है उसमें हम कितना बेहतर कर सकते हैं, तो किन खिलाड़ियों पे सबसे अधिक नजरें रहने वाली है भारतीय दल से?
1: देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। वहीं सर्वेश कुसारे जो है ऊंची कूद में, मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में, तो और बॉक्सिंग में अगर बात करें तो जैस्मीन लंबारा, साक्षी चौधरी ये अपना दमखम दिखाएंगी। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में, वहीं तुलिका मान जूडो में, और पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सुमांक राणा शॉर्टपुट में और शर्मिला भी शॉर्टपुट में अपना दमखम दिखाएंगी।
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर बात की जाए गुरविंदर सिंह पे भी नजर रहेंगी, स्टार भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने पिछले छह महीनों में भारत में ट्रैक एंड स्पीड इवेंट्स की एक नई इबारत लिखी है। इस खिलाड़ी ने अपने पदक से, अपनी रफ्तार से 100 मीटर में वापस पदक के लिए उतरेंगे और उम्मीद होगी कि भारत इस तरह के स्प्रिंटिंग इवेंट्स में भी अब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जैसे पोडियम फिनिश करते हुए अपने खिलाड़ियों को देखेगा। और नीरज चोपड़ा का तो बिल्कुल जिक्र होता है, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, जहां पे भी खिलाड़ी उतरता है, डायमंड लीग से लेकर कोई भी आयोजन। इन खिलाड़ियों के साथ साथ और क्या खास भारत के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम में हो सकता है, अगर हम बहुत कम समय में समझना चाहें तो?
1: देखिए, भारत जो है वो इस टूर्नामेंट की जो है चौथी सबसे सफल टीम है, तो उसी की तरह से भारत को खेलना होगा, अपने जो कोर स्पोर्ट्स हैं उन पर ध्यान देते हुए एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी और उम्मीद होगी कि इतने कम खेलों में भी किस तरह से वो 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ वाला प्रदर्शन दोहराया जाए। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
4: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
3: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को

0: हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और अनंत कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि अब रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
4: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
1: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई

0: और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संग्रह का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सुरीली धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार के गाए युगल गीत से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन। फिल्म का नाम रोमांस।

अभी आपने लता मंगेशकर और अमित कुमार को फिल्म रोमांस में सुना। दिल है कि मानता नहीं, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में, बोल समीर के आवाज अनुराधा पौडवाल की।

अभी आपने किशोर कुमार और साथियों को मोहब्बत फिल्म में सुना। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की, फिल्म का नाम लवर्स।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और यह है कार्यक्रम के अंतिम पेशकश गुलाम फिल्म से। तर्ज बनाई है जतिन ललित ने, रचनाकार हैं समीर, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोधन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोधन आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: पागल।
1: दोस्तों, आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को, जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन में हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया। लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज्म लिखी, उस नज्म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स। और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा, जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्शी साहब फैंस के लिए।
1: जरूर।
2: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
2: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा,
1: जी जी,
2: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले। इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का गाना था एक फिल्म में, जहां पर विलेन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, जनरल नरवणे ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस,
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ, वो बख्शी साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब ओम प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तक मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया आया। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, तो उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वहीं, जहाँ कोई आता जाता नहीं।
0: क्या बात,
1: तो ये वहां से वो बात निकली।
0: अच्छा,
1: गाना है अपना, एक बार सुभाष घाई साहब आए थे घर पे
0: जी,
1: उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी घाई साहब को कहा कि एक यार मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब नहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, उनके शायद फादर आ रहे थे बाहर गांव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए, उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में, दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रास्ते में कहीं बख्शी साहब

0: गाड़ी रोक दी। मैंने बोला रुक रुक रुक, लिखना है मुझे। और उन्हें एक कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, राह पर इस मोड़ पर कहीं तुम,
1: किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
0: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर।
1: ओहो,
0: वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी कि गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना मेरे हम सफर।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त है, इनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले और वहां पर स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं पर बख्शा ने वापस गाड़ी रोक दी। रुक रुक रुक, मुझे कोई लिखना है। उन्होंने कुछ अपना, उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 555 सीरियल पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइनें, जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। तीन चार छह महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल लेके, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली दो हफ्ते में, और चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला, याद है तेरे को हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी, और मैंने ये गाना लिखा था तब कि रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हम से ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्शी साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फूल गले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड, तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो, लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, यू नो, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके, तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट टू मी एंड टू माय ब्रदर टू माय सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था, जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिर नहीं करते थे, वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था उनकी लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने, तो मेरे डैडी ने कहा कि तेरे को पता है अंडे का भाव क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो। तो ईश्वर की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले, तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माय फादर वाज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 इयर्स ऑफ हिज करियर इन द बिगनिंग।
1: बिल्कुल,
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में। तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना।
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो।
1: क्या बात है।
0: इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
1: जी,
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी, तो मेरे डैडी कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्व नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के लिए कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है
1: जी।
0: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है, काम में और शौक में फर्क होता है, वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता, अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
1: क्या बात है। अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर।
0: गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है।
1: मैं समझ
0: सकता हूं। मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल चला गया था, यू नो, विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था, तो मैं कम से कम

0: दो हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा क्या हो गया तेरे को, दो हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, लफड़ा उड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ। मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत चाहेंगे हम अगर तू संग है। क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवेड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए। तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: क्या बात,
0: ऐसा ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है। और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता। तो बख्श साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे।
1: क्या बात,
0: लेकिन पहले खुद को याद करो, किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है। मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए।
1: जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: सीखा।
1: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
2: सुनो कहो, कहा सुना, कुछ हुआ क्या
3: अभी तो नहीं।

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया, और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा, और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये गाना।

साक्षी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आप सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत कुमार सानू की आवाज में, हकीकत फिल्म से। गीत के बोल समीर के हैं और धुन बनाई है दिलीप सेन समीर सेन ने।

शुदा भी आपने अलका याग्निक और कोमल सानू की आवाज में गुप्त फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी विजू शाह ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोर फिल्म से, लता मंगेशकर, मुकेश कुमार और साथियों की आवाज में।

शादी अब आपने लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाज में एक दूसरे के लिए फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के यूं धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं बरसात फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में।

शान और साना सरगम की आवाज में आपको सुनाते हैं हंगामा फिल्म का गीत। शब्द रचना समीर की ही धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अब सुनते ही अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ताल फिल्म का गीत, आनंद पक्षी के बोल ही ए आर रहमान का संगीत।

यशुदास की आवाज में आई हैसियत फिल्म के खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चले रात्रि के 11 बजने पर ही आपसे कुछ ही प्रमुख आप लेंगे आकाश।

0: साथ में प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और अनंत कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देशभर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले

0: हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं और हमारी आज की प्रसारण सुबह यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह के 5:55 पर रेड तरंग जरिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि। जय हिंद।